1958 की फिल्म हॉरर ब्रिज से निकली हुई आशा भोसले की आवाज, ओपन एयर संगीतकार ऑफ कोर्स और गीतकार कमर जलाल बादी, मधुबाला और अशोक कुमार की फिल्म। आज हम बात कर रहे हैं ओपन एयर यानी ओपी के विषय में। ओपन एयर को म्यूजिक इंडस्ट्री में आना आसान नहीं था। ओपन एयर के पिताजी लॉयर थे, भाई डेंटिस्ट, बहन फिजिशियन। ओपन एयर को एस्ट्रोलॉजी में काफी दिलचस्पी था। वैसे वास्तव में ये होम्योपैथी भी प्रिस्क्राइब करते थे और प्रैक्टिस करते थे उन दिनों। लेकिन ओपन एयर के दिल में लेटेंट वॉज द डिजायर फॉर म्यूजिक, और इस दिल में म्यूजिक को छुपाकर निकल पड़े और जाकर पंजाब में गया और वहां पंजाब में एक रेडियो स्टेशन में काम करना शुरू किया। ओपन एयर ने बताया कि वो रियाज भी नहीं करते थे। म्यूजिक वॉज गॉड गिवन टैलेंट टू ओपन एयर। 1964 की फिल्म कश्मीर की कली, शमी कपूर और शर्मिला टैगोर, मोहम्मद रफी के साथ आशा भोसले।

0: जहां।
1: मोहम्मद रफी के साथ आशा भोसले, संगीतकार ओपी नैयर ऑफ कोर्स, 1964 की फिल्म कश्मीर की कली, शर्मिला टैगोर और शम्मी कपूर की फिल्म। यह है संगीत की झनकार और आज आप सुन रहे हैं संगीत की झनकार में हमारे मेहमान ओपी नैयर। एक बार फिर 1964 की फिल्म कश्मीर की कली, मोहम्मद रफी संगीत।

1964 के फिल्म कश्मीर की कली, आवाज मोहम्मद रफी और ऑफ कोर्स संगीतकार ओपिनियर। ओपिनियर अक्सर ये कहा करते थे कि म्यूजिक कम्स फ्रॉम हिज सोल, यानी उनकी आत्मा से निकलता था। एक्चुअली ओपिनियर कंपोजर नहीं बनना चाहते थे, उनका इरादा कुछ और था। कितना भी दूर जाओ घर से रास्ता जरूर मिलेगा, कितना भी दूर जाओ घर से रास्ता जरूर मिलेगा, ए राही तू चल बस चल, ए राही तू चल बस चल, एक दिन तेरा समय भी जरूर फिरेगा।

1957 की फिल्म नया दौर, दिलीप कुमार और विजयंती माला की फिल्म आशा भोसले के साथ मोहम्मद रफी, गीतकार शाहिद लुधियानवी और संगीतकार ऑफ कोर्स ओपी नैयर, और फिर तारीफ करूं क्या उनकी 1964 एक बार फिर कश्मीर की कली। ये चांद सा रोशन

1964 की फिल्म कश्मीर की कली, ओपी नियर, वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड एंड हाईएस्ट पेड म्यूजिक कंपोजर्स ऑफ दोज डेज।

1965 की फिल्म मेरे सनम, ओपिनियर संगीतकार ऑफ कोर्स मजरूर सुल्तानपुरी, गीतकार आशा भोसले। और अब चलो आपके लिए फिल्म सीआईडी 1956, देवानंद की फिल्म, शमशाद बेगम, मोहम्मद रफी और आशा भोसले, संगीतकार ओपिनियर, गीतकार मजरूर सुल्तानपुरी।

यह है रेडियो 71 ब्रिस्बेन और आपके साथ फिरोज खान। आप सुन रहे हैं संगीत की जानकार, जिसको हम पेश करते हैं स्टेशन पर हर रविवार के सुबह 10 से लेकर 12 बजे तक। मैं आपका साथ देता हूं चुने हुए संगीत 50s, 60s और 70s से निकाली हुई ऐसे गीत जो हिट परेड में अपनी छाप छोड़ चुके हैं, ऐसे गीत जिसमें धुन जान माना जाता है। Those days when melody was supreme। और अब चलो साहब मिल करते एक बार फिर फिल्म नया दौर, 1957 की फिल्म नया दौर, और एक बार फिर संगीतकार ओपी नैयर, शाहिर लुधियानवी, गीतकार मोहम्मद रफी और आशा भोसले।

0: 1954 की फिल्म आर पार, द फिल्म दैट लॉन्च ओपी नियर्स करियर विद कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ गुरुदत्त. संगीत के जानकार में हमारे खास मेहमान ओपी नियर. हम लोग सब जो पुराने संगीत में दिलचस्पी रखते हैं तो हम लोग सब जानते हैं कि लता मंगेशकर ओपी नियर के संगीत पर कभी भी गीत नहीं गाई. इसका राज क्या था? व्हाट वॉज बिहाइंड लता मंगेशकर एंड ओपी नियर स्टिफ? तो चलो इसको हम सुनते हैं सारेगामा रिपोर्टर, सारेगामा के रिपोर्टर से, इनसे निकाली हुई कुछ छोटी सी कहानी लता और ओपी नैयर के टिफ के विषय में.
1: ओपी नैयर साहब ने अपने पूरे करियर में 73 रिलीज्ड हिंदी फिल्मों में गीत दिए, एक तेलुगु और 5 अनरिलीज्ड फिल्मों में भी उनके गीत गूंजे. 41 नॉन फिल्म सॉन्ग्स भी उन्होंने बनाए जिनमें गजलें, भजन और दोहे शामिल हैं. उनके हिंदी गीतों की कुल तादाद है 642 गीत, 642. लेकिन कमाल देखिए कि इन 642 गीतों में कभी कोई ऐसा मौका नहीं आया कि नैयर साहब ने लता जी की आवाज इस्तेमाल की. यानी लता जी ने कभी भी ओपी नैयर साहब के साथ काम नहीं किया. बावजूद इसके सन 2007 में जब नैयर साहब ने अपनी आखिरी सांस ली तो मैंने लता जी से उनकी राय जाननी चाहिए नैयर साहब के बारे में. लता जी का बड़प्पन देखिए कि पूरी जिंदगी नैयर साहब के साथ काम न करते हुए भी उन्होंने नैयर साहब के बारे में बात की. आइए सुनते हैं 2007 में क्या कहा था लता जी ने ओपी नैयर साहब के लिए.
2: ये समाचार तो बड़ा दुखद समाचार है, मुझे बहुत दुख है, सुन के मुझे बहुत खराब लगा. क्योंकि हमारे जो कुछ म्यूजिक डायरेक्टर्स थे जिनके बहुत नाम थे, उनमें नैयर साहब का भी एक नाम था. वो बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर थे और एक उन्होंने जब वो आए हैं इंडस्ट्री में तो उन्होंने एक नया ही दौर म्यूजिक का शुरू किया था जो हिला दिया था उस वक्त इंडस्ट्री को. क्योंकि हमारे यहाँ ऐसे लोग आते रहे, पहले मास्टर गुलाम हैदर ने आके शुरू किया था सिलसिला, उसके बाद शंकर जयकिशन और फिर नैयर साहब.
3: जी हाँ,
2: तो इन लोगों ने अपना एक स्टाइल बनाया था और अपने स्टाइल में उन्होंने म्यूजिक किया था. उसमें नैयर साहब का नाम बहुत अच्छी जगह पे आता था, ऊंची जगह पे आता था. तो उनके गाने सैड सॉन्ग भी हो, हैप्पी सॉन्ग तो होता ही था, तो वो उसमें एक रिदम का ज्यादा ही होता था. और ज्यादा उन्होंने पंजाब का फोक काफी इस्तेमाल किया और पंजाब के फोक में उन्होंने कुछ अपना अलग से एक ये बना के धुने बनाई, एक स्टाइल था उनका जिसमें उन्होंने अलग अलग टाइप के धुने बनाई जो चली और अभी तक चल रही हैं, लोग आज भी सुनते हैं.
3: जी जी
2: जी.
3: लता जी, आज नैयर साहब हमारे बीच नहीं रहे
2: जी,
3: तो आज क्या आपको कभी ये फीलिंग आती है कि आपने ओपी नैयर साहब के साथ कभी नहीं गाया?
2: नहीं, इसलिए कि देखिए नैयर साहब के साथ मैं सबसे पहले मैंने उनके साथ एक गाना गाना था
3: जी,
2: जो रिकॉर्ड नहीं हो सका, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी. और उसके बाद उन्होंने वो गाना किसी और से लिया और फिर जो उनका स्टाइल था, उनका कहना ये था कि मेरा जो स्टाइल है वो लता के गले से कभी अच्छा नहीं लग सकता है. और मैं भी वही महसूस करती कि उनका जो एक स्टाइल था वो शायद मेरे गले से इतना अच्छा नहीं लगता जितना कि गीता दत्त, आशा भोसले और शमशाद भाई, रफी साहब वगैरह, इन ये जब लोग गाते थे तो उस गाने में कुछ अलग ये पैदा होता था कलर, ऐसा मुझे लगता है. पर नैयर साहब ने काम छोड़ ही दिया था और वो अलग बम्बई से दूर थोड़ा सा मतलब थाना में जाके रहते थे और उन्होंने कभी वापस मुड़ के देखा नहीं और ये भी कोशिश नहीं की कि छोटी मोटी पिक्चर में म्यूजिक करूं. ये बहुत बड़ी बात, और वो अलग रहे और आज वो इस दुनिया में नहीं है. भगवान उनकी आत्मा को शांति दें.

यह है संगीत किचनकार और आप सुन रहे हैं ओपन ईयर पर एक विशेष प्रोग्राम. और इट्स वेरी हार्ड टू फाइंड ओपन ईयर्स सॉन्ग रिटन विद दैट स्केल, पर फिर भी ओपन ईयर इज अ मास्टर ऑफ रिदम.

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना दवाई हेल्थ चेक सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
2: कमर्शियल ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत करते हुए आशा करते हैं कि आज के दिन स्पेशल डे मदर्स डे आप सबके लिए शुभ हो। अभी आपने सुना स्पेशल प्रोग्राम ऑन ओपिनियर पार्टनर ऑफ आशा भोसले फॉर 14 ईयर्स। अभी थोड़ी देर में जारी रखेंगे यादों का सफर।
3: रेडियो ब्रिस्बानी 1701 ब्रिस्बेन।
4: आपने बना लिया है गहरा संबंध, सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि समाज सेवा, इसी स्टेशन के सहारे हम करते हैं आपके साथ। फीजी समाचार, भेंट वार्ता, स्थानीय समाचार, सामाजिक सूचनाएं, सुनते रहिए संगीत की झनका।
2: जी हाँ, ये है रेडियो 1701 ब्रिस्बेन। ये बात तो सब कोई जानता है लेकिन शायद आप ये नहीं जानते हैं कि 1701 ब्रिस्बेन ब्रिस्बेन के पहले फर्स्ट 24 आवर हिंदी रेडियो स्टेशन। जी हाँ, 1701 किलोहर्ट्ज़ 1701 ब्रिस्बेन, आपका पहचान, आपकी पहचान पुलिंग या स्त्रीलिंग मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपका पहचान 1701 ब्रिस्बेन, ब्रिस्बेन फर्स्ट 24 आवर हिंदी रेडियो स्टेशन। इट्स बीन देयर कम हेल ऑफ फ्लड लिटरली। जी हाँ, वापस आकर कमर्शियल ब्रेक के बाद एक बार फिर जारी रखते हैं यादों का सफर। के बाद करीबन 12 बजे से लेकर 12:30 बजे तक आपके लिए द अदर गोल्डन ईयर्स ऑफ बॉलीवुड हिट्स ऑफ 90s। आज सुबह जैकपुरन किशोर कुमार के चुने हुए लोकप्रिय संगीत आपके लिए पेश कर रहे थे। उसको सुनकर मुझे भी थोड़ा इंकरेजमेंट मिला। तो शुरू ये यादों के सफर का दूसरा भाग में शामिल करते हैं किशोर कुमार को। यह है संगीत की जानकार और मैं हूं आपका साथी फिरोज खान। शुरुआत कर रहे हैं 1961 की फिल्म झुमरू से निकाली हुई आवाज, किशोर कुमार संगीतकार, किशोर कुमार गीतकार, मजरू सुल्तानपुरी। पर्दे पर मधुबाला और किशोर कुमार।
5: मैं हूं झुमझुम।

ayoka paka yudade bagaluga baga yudade yudade yudade

बागा लोगा बागा।

0: संगीतमाला का शुरुआत हमने किया किशोर कुमार, आवाज संगीतकार किशोर कुमार, गीतकार मजरू सुल्तानपुरी, फिल्म 1965 की फिल्म झुमरू, और गीतमाला में अब शामिल करते हैं फिल्म 1950 की फिल्म समधी से निकाली हुई लता मंगेशकर के साथ अमीर बाई कर्नाटकी, श्री रामचंद्र के संगीत पर। आपने हमारा साथ दिया तो आपका स्वागत करते हैं माला से, यानी कि गीत माला से। ऐसे गीत जिसको एक बार सुनकर बार बार सुनने को जी चाहता है, ऐसे गीत जिसमें धुन का जान हो।
1: गोरे गोरे ओ बाके छोरे, कभी मेरी गली आया करो। गोरी गोरी ओ बाके छोरी, चाहे रोज बुलाया करो। गोरे गोरे ओ बाके छोरे।

0: गीत माला में अभी आप सुन रहे थे फिल्म समधी से निकाली हुई 1950 की फिल्म समधी, लता मंगेशकर के साथ अमीर बाई कर्नाटकी श्री रामचंद्र के संगीत पर। यह है संगीत की जानकार, आपका साथ फिरोज खान। आपने हमारा साथ दिया तो आपका स्वागत करते हैं माला से, यानी कि गीत माला से। और गीत माला में हर वक्त आपके लिए हम पेश करते हैं, ढूंढ के लाते हैं, आपका सफर कराते हैं। वेन गीत वेन मेलोडी वॉज सुप्रीम, जब धुन संगीत के जान माना जाता है।
1: दिलों को झंकृत करे,
2: हवाओं में फिजाओं में दिलकश संगीत के रंग बिखेरे,
0: और ये है संगीत की झंकार रेडियो 79.1

एक बार फिर श्री रामचंद्र के संगीत पर आवाज लता मंगेशकर, इस बार 1951 की फिल्म अलबेला से निकाली हुई When Melody Was Supreme। यह है संगीत की जानकार आपका साथ फिरोज खान। आगे चल के इस प्रोग्राम में आप सुनेंगे साज और आवाज, एक शब्द का कारवां, यादों का सफर और हिट्स ऑफ 90s। बहुत खूब संगीत की जानकार 10 से लेकर 11 बजे तक हर रविवार को आपके साथ फिरोज खान।

1951 की फिल्म अलबेला से निकाली हुई लता मंगेशकर सी रामचंद्र के संगीत पर 1951 की रिकॉर्डिंग है ना, तो क्वालिटी बहुत मजेदार नहीं है लेकिन फीलिंग तो बिल्कुल हाईफाई है। यह है संगीत की जानकार, आप सुन रहे हैं गीतमाला फिरोज खान के साथ। यह है संगीत की झंकार आपके साथ फिरोज खान, और संगीत की झंकार में आप सुन रहे हैं गीतमाला, और गीतमाला में हम आपके लिए पेश करते हैं ऐसे गीत जिसमें धुन हो। आपको याद है उन दिनों धुन संगीत की जान माना जाता था। देवानंद की फिल्म CID, साथ में शकला और आवाज शमशाद बेगम।

0: सनम की फिल्म सीआईडी से निकली हुई शमशाद बेगम की आवाज।
1: दिलों को झंकृत करें,
2: हवाओं में फिजाओं में दिलकश संगीत के रंग बिखेरे।
0: और संगीत की झंकार को हम यही छोड़ रहे हैं इस वादे से कि हम वापस आएंगे अगले रविवार को एक बार फिर। सो मेक इट अ डेट। लेकिन जाने से पहले आपके याद रहे हमारा टेलीफोन नंबर यहाँ रेडियो 79 ब्रिस्बेन पर 3279-1701 फ्रॉम 12:30 to 5। द लाइन्स विल बी ओपन। रॉय सिंह एंड सू विल एंटरटेन यू। टेक योर कॉल्स, टेक योर रिक्वेस्ट, take your dedication. Remember the telephone number 3279-1701 Brisbane.
3: 24 ghanta aapka saath deta hai Radio Brisbane, the Indian rhythm from down under.
4: Kabhi to rulaye, kabhi kabhi chain de to sataye, kabhi hame karte be khabar.
3: Radio Brisbane.

संगीत संसार में हर सप्ते नए एल्बम्स जारी होते रहते हैं, ऐसे में क्या नया और क्या सुनने के काबिल है, इसकी पकड़ रखना जरा मुश्किल है ना। हर एल्बम को सुनने के बाद हम चुन चुन कर बेहतरीन गाने ही बजाते हैं। Welcome once again to Sangeet Kichankar on this radio station 1701 Brisbane. Your host Firoz Khan looking forward to the pleasure of your company. आप सब सुनने वालों को फिरोज खान का नमस्ते आदाब और साथ आपका दिल चाहा कार्यक्रम संगीत की झनकार। लेकिन आपने हमारा साथ दिया, आपका स्वागत करते हैं माला से, यानी कि गीत माला है। आपका जो भी कारण हो साथ दीजिएगा ना।

फिल्म मैंने दिल तुझको दिया, उदित नारायण और अलका याग्निक, संगीतकार डब्बू मलिक। और अब गीतमाला में शामिल करते हैं फिल्म सड़क, संजय दत्त और पूजा भट्ट की फिल्म कुमार सानू के साथ अलका याग्निक। आपने हमारा साथ देते हैं, हम आपका स्वागत करते हैं माला से, यानी कि गीत माला से। ऐसे गीत जिसको एक बार सुनकर बार बार सुनने को जी चाहता है, संगीत की झनकार को सुनने को जी चाहता है। आपका साथ है

0: गीतमाला की दूसरी नगमा भी आप सुन रहे थे फिल्म सड़क से निकाली हुई, संजय दत्त और पूजा भट्ट के फिल्म कुमार सानू के साथ अनुराधा पौडवाल। और अब माधुरी दीक्षित एट हर बेस्ट विद आमिर खान, फिल्म दिल 1990 के रिलीज। आनंद मिलाज संगीतकार, आवाज उदित नारायण, साथ में अलका याग्निक और इस फिल्म में अनुपम खेर भी काम किया था।
1: आपने हमको चुना तो हम आपका स्वागत कर रहे हैं माला से, गीत माला अनमोल नगमे, नए पुराने फिल्मों के गाने गीत माला में।

0: आमिर खान और माधुरी दीक्षित फिल्म दिल से निकाली हुई 1990 के रिलीज, आनंद मिलान संगीतकार और साथ में उदित नारायण और अलका याग्निक। संगीत की जानकार गीतमाला के अंतर्गत भी आप सुन रहे थे माधुरी दीक्षित की ब्लॉकबस्टर मूवी दिल।
1: Hi, I'm Padma and you're listening to Hits of the 90s and recent past hits with your host Feroz Khan.
0: फिलहाल गीतमाला में शामिल करते हैं फिल्म आशिकी।

0: राहुल रॉय, अनु अग्रवाल और अवतार गिल की फिल्म में दिग्विजय संगीतकार गीतकार समीर।
1: रेडियो संगीत की जानकार, मनोरंजन, संस्कृति और समाचार।
2: दिल दिल से मिला कर देखो,
1: यह है रेडियो ब्रिस्बानी 79.1 ब्रिस्बेन, ब्रिस्बेन्स फर्स्ट 24/7 हिंदी रेडियो स्टेशन।
2: अपना तो बना कर देखो,
1: जी हाँ, अपना तो बना कर देखो। We present, you decide. You phone us on 3279701. We listen to you because you listen to us.
3: संगीत के झनकार 1701 ब्रिस्बेन पर आप सुन रहे हैं रिसेंट पास्ट हिट्स ऑफ 90s फिरोज खान के साथ।
0: फिलहाल गीतमाला को आगे बढ़ाते हुए आपके लिए पेश करते हैं फिल्म मेरे दिल के आंगन में। निखिल बने संगीतकार, रानी मलिक गीतकार, आवाज कुमार सानू।

दीपमाला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे फिल्म मेरे दिल के आंगन में से निकाली हुई कुमार सानू की आवाज निखिल बने संगीत का। यह है 1701। आप सुन रहे हैं हिट्स ऑफ 90s और रिसेंट पास हिट, ऐसे गीत जो हिट ब्रेक में अपनी छाप छोड़ चुके हैं। ऐसे ही गीत से हम अपने कार्यक्रम का शुरुआत करते हैं। रिसेंट पास हिट्स और हिट्स ऑफ 90s, ऐसे गीत जिसको एक बार सुनकर बार बार सुनने को जी चाहता है।

Yes, इन संगीत के जानकार वी टेक यू ऑन अ जर्नी डाउन मेमोरी लेन इन यादों का सफर ओल्ड हिट्स लेटेस्ट हिट्स एंड हिट्स ऑफ 90s इन गीतमाला। फिलहाल गीतमाला बढ़ाते हुए फिल्म

0: गीत माला में आप सुन रहे थे गोविंदा की फिल्म शिकारी से निकाली हुई अदेश श्रीवास्तव के संगीत पर और गीतकार समीर, संगीत की जानकार गीत माला के अंतर्गत।
1: हौसलों की उड़ान है एक खूबसूरत आवाज, तो कुछ करने का जज्बा भी है एक खूबसूरत आवाज। वो आवाज ही क्या जो दिल की जबां को बेपरवाना कर जाए। आवाज तो वो है जो दिल से निकलते ही दिल में उतर जाए। आपके हमनवा फिरोज।
0: गीतमाला में आप शामिल करते हैं एक बार फिर फिल्म आशिकी, वन ऑफ द क्लासिक हिट्स ऑफ द 90s। आशिकी राहुल रॉय और अनु अग्रवाल, साथ में अवतार गिल, संगीतकार नदीम शर्मा, गीतकार समीर। इज वन ऑफ दोज सॉन्ग्स, वन ऑफ दोज मूवीज वेयर एवरी सॉन्ग इज अ हिट। फिल्म आशिकी।

संगीतकार नदीम शर्मन, गीतकार समीर, डायनेमिक डुओ ऑफ द 90s राहुल रॉय और अनु अग्रवाल की फिल्म आशिकी से निकली हुई आप सुन रहे थे संगीत की जानकार पर गीतमाला के अंतर्गत। और अब शामिल करते एक बार फिर आमिर खान और माधुरी दीक्षित की 1990 की पेशकश, संगीतकार आनंद मिलान, फिल्म दिल। यह है संगीत की जानकार।

0: दिलों को झंकृत करे,
1: हवाओं में फिजाओं में दिलकश संगीत के रंग बिखेरे।
2: और ये है संगीत की जानकार रेडियो 701 ब्रिस्बेन, और आपके साथ फिरोज खान।
3: So why don't you make it a date every Sunday morning from 6 to 5 p.m. here on Radio 1701.
4: Hi, I'm Padma and you're listening to Hits of the 90s and Recent Past Hits with your host Feroz Khan.
2: Aur Geet Mala mein is baar shamil karte hain the Queen of 90s, Madhuri Dixit ki film Sajan se nikali hui, saath mein Sanjay.

0: आइएगा मेरी जान संडे को 5 से लेकर 8 बजे तक आपका साथी फिरोज खान संगीत की झनकार स्टेशन 79.1 ब्रिस्बेन पर। संगीत की झनकार हर रविवार को 5 से लेकर 8 बजे तक, जिसके अंतर्गत आप सुन सकेंगे भूले बिसरनक में यादों का सफर, गीत संगीत शायरी गजलों का एक हसीन संगम, शेर नगमा, हिट्स ऑफ 90s, रीसेंट पास्ट हिट, ये सब बहुत खूब 3 घंटे का विशेष प्रोग्राम संगीत की झनकार 79.1 ब्रिस्बेन आपके साथी फिरोज खान। अगर आप नहीं आ सका तो फिर
1: खिलाओ मुर्गी के अंडे अंडे खाना मेरी जान संडे के संडे।
0: जी हाँ, आइएगा संडे को रविवार को आपका साथी फिरोज खान संगीत की झनकार 79.1 ब्रिस्बेन पर। 1991 की फिल्म दिल है कि मानतने, पूजा भट्ट और आमिर खान। वास्तव में आप कई बार सुन चुके हैं फिल्म कभी कभी के डायलॉग, मैं जानता हूं कि तू गैर है मगर यूं ही कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। और जावेद की फिल्म

0: तू प्यार है किसी और का, चाहता तुझे कोई और है, क्या करें दिल है कि मानता नहीं। संगीत की झंकार गीत माला के अंतर्गत आया आखिरी मिनट में भी आप सुन रहे थे फिल्म दिल है कि मानता नहीं से निकाली हुई।
1: दिलों को झंकृत करें,
2: हवाओं में फिजाओं में दिलकश संगीत के रंग बिखेरें।
0: और संगीत की जानकार को हम यही छोड़ रहे हैं, आपका साथी फिरोज खान हर रविवार को 10 से लेकर 12:30 बजे तक संगीत की जानकार स्टेशन 79 ब्रिस्बेन पर। हम छोड़ रहे हैं आपको वादे के साथ कि अगले रविवार को एक बार फिर हम आपके साथ हो जाएंगे 10 से लेकर 12:30 बजे तक। अभी थोड़ी देर में 12:30 बजे से लेकर 5 बजे तक रेडियो 79 के टेलीफोन 9 3279 विल बी ओपन। सू एंड रॉय विल बी हियर टू टेक योर कॉल्स, योर रिक्वेस्ट, डेडिकेशन और जस्ट रिंग इन टू से हेलो। दे विल लिसन टू यू बिकॉज यू लिसन टू देम।
3: रेडियो वो हो जिसमें महबूब का दम हो, रेडियो वो जिसमें महबूबा की सांसें हो, रेडियो वो जिसमें समाज सेवा हो।
4: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
5: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 04209331 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
4: अरे वाह, इनका पता बताना।
5: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 04209331। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

0: नहीं, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाली शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: आएगा?

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
0: गो फॉर द बेस्ट वीरे। अतुल भारद्वाज जी नु अज ही कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी एंट्री केसेस नु हैंडल करन च वी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वध दा रिच एक्सपीरियंस ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज विच वी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली to minimize it.
1: Thanks a ton, Veere. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

है रेडियो 79.1 जिसके द्वारा आप हर रोज हमारे हिंदुस्तानी कार्यक्रम को सुनते हैं। याद रहे हमारा टेलीफोन नंबर है 3279-1701। अगर आप सूचनाएं या एडवर्टीजमेंट भेजना चाहते हैं तो आप कृपया हमारे पास फैक्स करें। हमारा फैक्स नंबर है 3279-2506, 3279-2506।

0: Good afternoon and welcome back to Radio Brizvani. Namaskar, Ram Ram, Kemcho, Sastikal, Salaam Alaikum, aur Bula kehte hue ek baar fir aap sabhi ka hardik swagat hai Radio Brizvani par. रविवार के शाम ठीक 12:30 बज चुका है, ठीक अभी से लेकर 2:30 बजे तक शाम का सफरनामा कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत हम करना चाहेंगे। जी हाँ, मैं हूँ रोहित सिंह, ठीक अभी से लेकर 2:30 बजे तक आपका हमारा साथ है रेडियो ब्रिजवानी पर। जुड़ जाएगा हमारे साथ 2 घंटा का रंग रंग कार्यक्रम में।
1: हर बात का वक्त मुकर्रर है, हर काम के साथ होती
0: है। हमेशा की तरह फोन नंबर 3279-1701 1701 पर ये कार्यक्रम आपके लिए हम अपने स्टूडियो से लाइव पेश कर रहे हैं। देश विदेश में आप हैं, इंटरस्टेट में आप हैं, ऑस्ट्रेलिया में और ब्रिस्बेन में आप हैं, आप सभी का हार्दिक स्वागत हम करना चाहेंगे रेडियो ब्रिजवानी पर।

ठीक है, अभी से लेकर 2 घंटे का खूबसूरत सा कार्यक्रम, लाइव कार्यक्रम आपके स्टूडियो से पेश कर रहे हैं शाम का सफर। आपने अपना रेडियो खोला, आप सभी का हार्दिक स्वागत है रेडियो बिस्वानी पर। 2 घंटे के लिए साथ में जुड़ जाइएगा।

कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी को, जितनी भी माताएं इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, आप सभी को हम कहना चाहते हैं हैप्पी मदर्स डे। और दूसरा ये याद कीजिएगा, मदर्स डे सिर्फ एक दिन नहीं होना चाहिए, हमेशा हर दिन मदर्स डे होना चाहिए। जितनी भी माताएं इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, हैप्पी मदर्स डे टू यू। एक या दो गीत हमारे पास है मदर्स डे पर आधारित, क्योंकि मदर्स डे सेलिब्रेट करना चाहिए। खूबसूरत सा कार्यक्रम लेकर आज हम अपने स्टूडियोज में उपस्थित हुए हैं। जरूर से साथ दीजिएगा, याद कीजिएगा, रोज इनके साथ है रेडियो ब्रिजवानी पर। ठीक है, इसे लेकर 2:30 बजे तक आपका हमारा साथ रहेगा, जुड़े रहिएगा 2 घंटे के लिए रोहित सिंह के साथ रेडियो ब्रिजवानी पर।

और अगर आपने अपना रेडियो भी खोला, आप सभी का हार्दिक स्वागत हम करना चाहेंगे रेडियो ब्रिजवानी पर। रेडियो ब्रिजवानी सप्ताह के सात दिन 24 घंटे आपकी सेवा में लगे रहते हैं। रेडियो ब्रिजवानी आपकी पहचान। और याद कीजिएगा रोहित सिंह के साथ ये कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं, दो घंटे का रंग रंग कार्यक्रम। हमेशा की तरह कार्यक्रम आरंभ करते हैं स्थानीय कलाकार से। और आज के हमारे स्थानीय कलाकार फिजी के स्वर्गीय दयानंद। आपका हमारा साथ है रेडियो ब्रिजवानी पर।

एक और एक खूबसूरत गीत दैनल की आवाज में फिर हम कार्यक्रम का रुख आप सभी के लिए बदलेंगे। याद कीजिएगा रोहित के साथ है, जुड़े रहिएगा ठीक 2 घंटे तक, आपका हमारा साथ है ठीक 2:30 बजे तक।

0: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
1: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
0: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
1: एट शॉप 9B सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल prince jewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।

0: दूसरा याद कीजिएगा रोहित के साथ ये कार्यक्रम आप सभी रेडियो बिजवानी पर सुन रहे हैं। आज मदर्स डे है, हर एक माँ को हैप्पी मदर्स डे। और जैसे कि मैंने कहा कि मदर्स डे सिर्फ एक दिन नहीं होना चाहिए, हमेशा हर दिन होना चाहिए। तो जितनी भी माताएं इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, आज का दिन आप सभी के लिए बहुत ही खूबसूरत सा दिन हो। मदर्स डे पर आधारित सिर्फ हम दो गीत पेश करेंगे आज, और फिर उसके बाद खूबसूरत से गीत आप सभी जितनी भी माताएं सबके लिए पेश करेंगे। चलते हैं सबसे पहला गीत आप सभी के लिए।
1: हे माँ, तेरी महानता, तेरी ममता को सादर प्रणाम। भगवान की सूरत, ममता की मूरत, जिंदगी की जरूरत सिर्फ माँ है। माँ तो कुदरत का सबसे बड़ा अजूबा है।

जी हाँ, जितनी भी माताएं इस कार्यक्रम को सुन रही थी, खूबसूरत सा गीत आपके लिए हमने पेश किया है। और अब चलते हैं, जितने लोगों के पास माँ नहीं है कोई बात नहीं, आप उनके प्यारे यादों के साथ आप हैं, उनकी अच्छी अच्छी यादें के साथ आप हैं, उन्हें हमेशा याद कीजिएगा, चाहे दिन हो या रात हो, हर दिन याद कीजिएगा। और चलते हैं स्वर्गीय बफेलर की आवाज़ में, बहुत ही खूबसूरत सा गीत।

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience a. Te law di entry cases nu handle karan ch vi oh expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience a. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Honey, ye tum kahan le ja rahi ho? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
3: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
2: ऐसा क्या खास है वहाँ?
3: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
2: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
3: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

दूसरा रियाज किंग और इसी के साथ एक कार्यक्रम आप सभी रेडियो बिजवानी पर सुन रहे, ठीक है, अभी से लेकर 2:30 बजे तक कार्यक्रम का रूप बदलते हैं। उम्मीद करता हूँ ये कुछ खूबसूरत समय में आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। आपका हमारा साथ है, जरूर समय फोन कीजिएगा। चलते हैं खूबसूरत गीत में, खूबसूरत यादें भी बसे हुए हैं।

पर्दे पर नीतू सिंह और रणधीर कपूर के लिए आशा भोसले किशोर कुमार की आवाज आर डी बर्मन के संगीत पर।

खूबसूरत से गीत, खूबसूरत से कार्यक्रम रोइसे के साथ है रेडियो ब्रिजवानी पर शाम का सफर। इस गीत में हम याद करते हैं शिवांश पति रवि प्रताप को, बहुत ही खूबसूरत से गीत, वन ऑफ माय फेवरेट्स जातियों आपके लिए हम रेडियो ब्रिजवानी पर पेश कर रहे हैं। जहां दो साथियों ये गीत जब मैं सुनता हूँ, एक्चुअली जब मैं काम पर जाता हूँ सुबह अपने गाड़ी में अकेले जाता हूँ, तो इस गीत को हम रोज सुनते हैं फुल ब्लास्ट पर, और आजू बाजू में जितने भी ट्रैफिक वाले हैं सभी देखते रहते हैं मुझे, फिर भी मैं सुनता ही रहता हूँ इस गीत को। बहुत ही खूबसूरत से गीत पर्दे पर ऋषि कपूर और पूनम ढिल्लों के लिए।

चलते हैं इस गीत में, याद करते हैं शिवान श्रीमती अनिल और रजीना चंद को। आप ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, नमस्कार। उम्मीद करता हूँ गीत आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। अरे याद कीजिएगा, मैं हूँ रोहित सिंह, रेडियो बिजवानी पर।

पर्दे पर राजेश खन्ना और श्रीदेवी के लिए एक बार फिर किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज में फरमाइश करने वाले एक बार फिर श्रीमान श्रीमती रवि प्रताप आप दोनों के लिए

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking

और दूसरा याद कीजिएगा रोहित के साथ एक कार्यक्रम आप सभी सुन रहे रेडियो ब्रिजवानी पर। हमारे साथ जुड़े रहिएगा ठीक एक और घंटे तक, ढाई बजे तक आपका हमारा साथ रहेगा। अगले खूबसूरत से गीत में हम याद करते अपने बहुत ही अच्छे दोस्त और उनके पत्नी को श्रीमान श्रीमती रवि प्रताप, आप दोनों के लिए ये खूबसूरत से गीत।

0: Celebrate Mum this Mother's Day with Digicel. Digicel is giving away cash prizes when you send top up or money transfer to My Cash Wallet in the Pacific. Simply send $20 or more Digicel top up or send $300 or more money transfer from any of our money transfer partner websites to your family and friends in the Pacific with a My Cash Wallet. And you enter the draw to win one of 15 $500 cash prizes. Send a $20 top up or $300 money transfer today for your chance to win $500 cash to celebrate Mum this Mother's Day. Terms and conditions apply.
1: Bigger, better deal.
2: इस मदर्स डे को बनाए और भी स्पेशल डिजिसेल के साथ बस भेजे $20 या उससे ज्यादा का टॉप अप या $300 या उससे ज्यादा का कैश ट्रांसफर इनकी किसी भी पार्टनर वेबसाइट से माई कैश वॉलेट के साथ टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स इन द पैसिफिक और आपका नाम तुरंत जाएगा ड्रॉ में टू विन वन ऑफ द 15 $500 कैश प्राइज. तो $20 का टॉप अप भेजे या $300 का कैश और डिजिसेल के साथ मौका पाए जीतने का $500 कैश. T's and C's apply.
3: हम पानी में वापस जा सकने के बारे में उत्साहित हैं, लेकिन हमें सुरक्षित रहने की आवश्यकता है. हमेशा बच्चों के साथ रहें, शराब नहीं पिएं, मछली पकड़ते या नाव की सवारी करते समय लाइफ जैकेट पहने रहें. मौसम के बारे में पहले से पता करें, कभी भी अकेले पानी में नहीं जाएं. रॉयल लाइफ सेविंग चाहता है कि आप सुरक्षित तरीके से पानी का आनंद उठाएं.
4: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं. अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता. कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
5: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ. फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं.
4: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
5: बिल्कुल. ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया. ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स. अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए. ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG. वेबसाइट omsorg.co.in. व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360. ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर.
6: और थोड़ी देर के लिए कार्यक्रम का रुख एक बार फिर हम बदलते हैं. हमारे स्टूडियो की घड़ी के अनुसार ठीक 2 बज चुका है. आधे घंटे में कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा. याद कीजिएगा रोहित सिंह के साथ ये कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं. कुमार शानू की आवाज में खूबसूरत संगीत आप सभी के लिए.

रोहित सिंह के साथ ही कार्यक्रम आप सभी रेडियो ब्रिजवाणी पर सुन रहे हैं। कार्यक्रम में साथ जरूर दीजिएगा। 5 मिनट होना चाहते हैं 2:07, हमारा जरूर दीजिएगा रेडियो ब्रिजवाणी पर।

0: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
1: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
2: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
1: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
2: किस दुनिया में हो भाई? क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
1: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
2: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
3: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 04006644355, याद रहे 04006444355 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
4: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
5: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। प्री सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे, प्री सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 04305258 96, दैट इज 04305258 96। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
6: कुमार सानू की आवाज में बहुत ही खूबसूरत से गीत आप सभी के लिए, और स्टूडियो के घड़ी के साथ ठीक 10 मिनट होना चाहते 2:30 कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा। फिर 2:30 से 5 बजे तक आप सू के साथ कार्यक्रम सुन सकेंगे। हमारा साथ जरूर दीजिएगा। ठीक है।

खूब से गीत एक बार फिर फरमाइश करने वाले श्रीमान और श्रीमती रवि प्रताप आप दोनों के लिए। उम्मीद करता हूँ ये नगमा आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। मैं हूँ रोहित सिंह, ठीक अभी से लेकर 2:30 बजे तक आपका हमारा साथ है रेडियो ब्रिजवानी पर।

और दूसरा देसी गीत के साथ साथ हम अपने कार्यक्रम की समाप्ति पर पहुंचे। उम्मीद करता हूँ कि आज का कार्यक्रम आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। हमारी और आपकी मुलाकात अगले रविवार की शाम ठीक 12:30 बजे से होगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। हैव द बेस्ट ऑफ द वीकेंड एंड अ वेरी ब्यूटीफुल वीक अहेड। और रेडियो बंद मत कीजिएगा, थोड़ी देर में आप सभी के साथ कार्यक्रम सुन सकेंगे। उनका साथ दीजिएगा ठीक 2:30 से 5 बजे तक। साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए नमस्ते, हैव अ प्लेजेंट आफ्टरनून, शब खैर और बिना का।

है रेडियो 79.1 जिसके द्वारा आप हर रोज हमारे हिंदुस्तानी कार्यक्रम को सुनते हैं। याद रहे हमारा टेलीफोन नंबर है 3279-1701। अगर आप सूचनाएं या एडवर्टीजमेंट भेजना चाहते हैं तो आप कृपया हमारे पास फैक्स करें। हमारा फैक्स नंबर है 3279-2506। 3279-2506।

आप सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आप सुन रहे हैं आपकी अपनी पहचान रेडियो विजवानी 1701, जिसे हम आप तक पहुंचा रहे हैं अपने स्टूडियो 17 माइल्स रॉक्सी ब्रिस्बेन से। आज आपके साथ सू, अभी आपके साथ ये रोहित सिंह ने चलते हैं पूरे 5 बजे तक, साथ है हमारा आपका। बहुत कुछ आज हमारे पास है दोस्तों, बहुत सारे से डेडिकेशन है और आज हमारे पास बर्थडे अनाउंसमेंट भी आई है। क्या बात है, डबल बधाइयां है। जी हाँ, अगर आज आपके जन्मदिन है, शादी की सालगिरह है, कुछ भी आप खुशियां आपके पास है, हमारी तरफ से आपको बहुत सारे से बधाइयां रेडियो विजवानी की ओर से। अगर आप हमारे साथ शामिल होना चाहते हैं 3279-1701 हमारा स्टूडियो नंबर है, नहीं तो आप हमें मोबाइल पर SMS कर सकते हैं। आज बहुत प्यारा सा दिन है सभी माओ के लिए, मदर्स डे सभी माँ के लिए, प्यारी प्यारी माँ के लिए। माँ क्या है दोस्तों, हमारे हर मर्ज की दवा होती है माँ। कभी डांटती है हमें तो कभी गला लगा लेती है माँ। हमारी आंखों के आंसू अपनी आंखों में बसा लेती है माँ। अपनी होठों की हंसी हम पर लुटा देती है माँ। हमारी खुशियों में शामिल होकर अपने गम को भुला देती है माँ। और जब कभी भी ठोकर लगे तो हमें तुरंत याद करना चाहिए अपनी माँ को, या माँ हमें याद करती है। दुनिया के तापिश में हमें आंचल की शीतल की छाया से बचाती है हमें माँ। चाहे खुद कितनी भी थकी, हमें देखकर उनकी थकान भूल जाती है माँ। प्यार भरे अपने हाथों से हमेशा हमारी थकान मिटाती रहती है। जब बात भी लजीज की आने हो तो हमें याद आती है माँ। रिश्तों को खूबसूरती से निभाना जानती है माँ। लफ्जों में जिसे बनाया है बयां किया जा सके, वो ऐसी होती है माँ। भगवान जिसकी ममता, उसके आगे भी झुक जाती है माँ। हैप्पी मदर्स डे।

और चलते हैं अपनी सभी माँ को याद करते हैं बहुत प्यारा सा गीत से, जिसे आप सुनने जा रहे हैं नुसरत फतेह अली खान की आवाज में।

ब्यूटीफुल मदर्स डे सॉन्ग आपने सुना नुसरत फतेह अली खान की आवाज में। जो लोग आज रेडियो सुन रहे हैं, बहुत सारे से हमारे पास डेडिकेशन आई है मदर्स डे पर, और साथ साथ में हमारे पास आज बर्थडे अनाउंसमेंट भी आई है। तो एक बिल्कुल ही इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है हमारे पास 5 बजे तक दोस्तों। और हमारा फोन नंबर नोट करे 3279-1701। आपके साथ रेडियो ब्रिस्बेन AM पर सुबह शाम के सफर पर।

आप सुन रहे हैं आपकी अपनी पहचान रेडियो विस्वानी 1701। हमारे स्टूडियोज में 3:15 बज चुके हैं दोस्तों। आज आपके साथ सू, और अगर आपने अभी ट्यूनिंग किया है, स्वागत है आप सभी का रेडियो विस्वानी से। तो चलते हैं, बहुत समय नहीं लेते हुए, बहुत से डेडिकेशन है आज हमारे पास। आज सबसे पहले फरमाइश हमारे पास आई है अनवर शहरुल की ओर से फ्रॉम आच फिल, मदर्स डे की ओर से हैप्पी मदर्स डे टू यू टू। तो चलते हैं आपके लिए अगला गीत जो है आज का। पहला फरमाइश है, मुझे प्यार दे दो माँ, अपना दुलार दे दो माँ। अनवर और शहरुल की पसंद तुम आ चुके हो।

और जी हाँ दोस्तों, इस गीत में हमारे साथ शामिल हो गए आसिकेन आसमा फ्रॉम पाकिस्तान, जो अनवर शहरुल के साथ हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं। हैप्पी मदर्स डे टू यू।

0: ब्यूटीफुल सॉन्ग दोस्तों, बहुत सारे से रिक्वेस्ट मदर्स डे पे हमारे पास आज आए हैं, तो चलते हैं आज दूसरा की सुनने से पहले हमारे स्पॉन्सर्स की खबर सुनते हैं।
1: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
2: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
1: Go for the best vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience aa. Te law di intricacies nu handle karan ji o expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience aa. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
2: Thanks a ton, Veere. I'm so relaxed to hear that.
1: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul ji nu on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
3: Hi, this is Amitabh Bachchan. Aur aap sun rahe hain Radio Briswani.
4: Hi guys, I'm Madhvi from the Meat Brothers. Aap sun rahe hain Radio Briswani.
5: Hi, this is Salman Khan.
6: Aur aap sun rahe hain Radio Briswani.
7: Hi, this is Deepika Padukone aur aap sun rahe hain Radio Briswani.
8: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
9: Hi, main hoon Tulsi Kumar aur aap mujhe sun rahe hain Radio Briswani pe.
10: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
11: Hi, this is Ajay Devgan aur aap sun rahe hain Radio Briswani.
0: चलते हैं दोस्तों हेरिटेज पार्क की ओर। साधना हमें सुन रही है। साधना, हैप्पी मदर्स डे टू यू टू। और आज साधना बहुत सारे से प्यार भेज रही है अपनी माँ के लिए जो ऑकलैंड न्यूजीलैंड में सुन रही है, और साथ साथ में उनके भाई है यहाँ पर ब्रिस्बेन से जितेन, और उनके परिवार अपनी माँ को याद किया है फ्लेक्सटन ब्रिस्बेन से, एंड सेइंग अ वेरी वेरी हैप्पी मदर्स डे। तो साधना और उनके परिवार फ्रॉम हेरिटेज पार्क, उनके भाई जितेन इन फैमिली फ्रॉम फ्लेक्सटन Brisbane, thinking, sending best love and regards for mom on Mother's Day. Happy Mother's Day to you all.
12: तुमने मान ली थी, तो मैंने क्यों मानी? तुम तो कौशल्या थी, मैंने अपने दुख में तुम्हें कई बना दिया।

लता मंगेशकर की आवाज का ब्यूटीफुल सॉन्ग, इसकी फरमाइश डेडिकेशन आई थी हमारे पास यहाँ हेरिटेज पार्क से साधना उनके फैमिली की ओर से, और साथ साथ में उनके भाई यहाँ फ्लेक्सटन ब्रिस्बेन जितेन और उनके परिवार की ओर से सेंडिंग द बेस्ट लव एंड रिगार्ड्स ऑन मदर्स डे एंड लाइक टू से हैप्पी मदर्स डे टू देयर ब्यूटीफुल मॉम इन ऑकलैंड न्यूजीलैंड। आप सुन रहे हैं रेडियो विश्वानी, आपकी अपनी पहचान। दोस्तों बस एक मिनट रह गए हमारे स्टूडियोज की घड़ी में 3 बजने में, हम चलते हैं सैन फ्रांसिस्को। जी हमारे पास, जी हाँ कॉल है सैन फ्रांसिस्को से सूजी नारायण की ओर से, बाई साइड सैन फ्रांसिस्को। और सूजी अगला गीत जो सुनना चाहती है अपने भाई की याद में जिनकी डेथ हो गई है बिफोर लास्ट वीक इन सॉरी फिजी में, तो चलते हैं आपकी फरमाइश पर सूजी, सुनते हैं अगला गीत। आदमी मुसाफिर है

0: बहुत प्यारे से गीत रफी साहब की आवाज में आपने सुना और फरमाइश थी हमारे पास इस गीत के लिए सैन फ्रांसिस्को से सूजी नारायण की ओर से। और सूजी ने इस गीत में आज अपने भाई को याद किया जो आज उनके साथ में नहीं है। आप सुन रहे हैं रेडियो विस्वानी, आपकी अपनी पहचान, आज आपके साथ सो।
1: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
2: यार आई एम सो वरीड, actually want an experienced lawyer to handle my case.
1: मेरी एडवाइस है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का vast experience है और law की entry cases को handle करने में उनकी expertise है. Criminal law, domestic offence, traffic drug offence में 12 साल से ज्यादा का rich experience. और तो और conveyance, family law, immigration laws में भी भारद्वाज and associates के lawyers का vast experience है. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
2: Thanks, Atanya. I'm so relaxed to hear that.
1: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
3: बिजली का बिल देखकर हर महीने शौक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे, रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
0: चलिए है दोस्तों, हम लेकर आ रहे आज के बर्थडे अनाउंसमेंट जी। हम चलते हैं सिडनी की ओर जहां पर आशा चंद आज अपनी जन्मदिन मना रही है। आशा, क्या बात है, आपको डबल बधाई, हैप्पी मदर्स डे टू यू, हैप्पी बर्थडे, मेनी मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। तो चलते हैं, बहुत से लोगों ने आपको प्यार भेजा है और खास करके आज आपकी बेटियां हैं आपके साथ में और आपके ग्रैंड डॉटर्स है और साथ साथ में आपको एक बहुत बड़ी ट्रीट दी गई है। सिडनी में ओपरा हाउस की तरफ आप जा रहे हैं, लंच ट्रीट है, वाह व्हाट अ सरप्राइज। और साथ में आपकी बड़ी बहन कामिनी नारायण और साथ में जीजू आपके विजयन वहां से बहुत सारे से आशीर्वाद और प्यार भेज रहे हैं ऑल द वे फ्रॉम सैक्रामेंटो USA। और साथ साथ में आपकी बहन प्रवीणा आपको प्यार भेज रही है ऑकलैंड न्यूजीलैंड से। और हम यही कहना चाहते हैं आशा जी कि फूलों ने अमृत के जाम भेजा है, सूरज ने गगन से सलाम भेजा है, मुबारक हो आपको आपका जन्मदिन, हमने तहे दिल से आपको एक पैगाम भेजा है, जन्मदिन की बहुत सारी सी बधाइयां। और यही कहना चाहते हैं कि बार बार दिन आए, बार बार दिन गए तो जिए हजारों साथ। ए मेरी है आरजू, हैप्पी बर्थडे वंस again from Radio Vishwani team, have a wonderful day, happy Mother's Day। Asha ji, chalte hai aapke liye, aapki request par sunte hai agla geet।

बार पैरासर गेट और बहुत प्यारी सी आशा चंद वहां पर सिडनी में जो हमें सुन रही हैं आज अपनी जन्मदिन मना रही है, साथ साथ में मदर्स डे भी अपने बेटियों के साथ अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ साथ साथ में सिडनी डार्लिंग हार्बर में उनके लंच सेलिब्रेशन है आज एंजॉय और बहुत सारे से प्यार भेज रहे हैं ऑलरेडी वहां से ऑल द वे फ्रॉम सैक्रामेंटो यूएसए से आपकी बड़ी बहनें कामनी और जीजू विजयन और साथ में आपकी बहन न्यूजीलैंड से प्रवीणा ने याद किया है आपको प्यार आशीर्वाद हैप्पी बर्थडे फ्रॉम रेडियो विश्वानी टीम और आपकी पसंद पर सुनते हैं अगला गीत।

0: इसलिए आगे आज की रात होना है जो फरमाइश करने वाली थी आशा चंद, जो आज सिडनी में अपनी जन्मदिन डबल सेलिब्रेशन है उनके जन्मदिन साथ साथ में मदर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। वंस अगेन आशा जी थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। एंड आप अपना बर्थडे एंजॉय कीजिए, मदर्स डे भी एंजॉय कीजिए। जो लोग भी आज अपने जन्मदिन मना रहे हैं आप सभी को हमारी तरफ से हैप्पी बर्थडे।
1: क्या आपकी शादी होने वाली है तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। For best service, complete legal paperwork, marriage certificate and a memorable marriage ceremony, remember the name Parmanand, your professional and friendly civil marriage celebrant since 2003.

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at royleendrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: चाहते हैं मदर्स डे पर अगला गीत की रिक्वेस्ट हमारे पास आई है और सिडनी से विशिंग ऑल द मॉम्स एवरीवेयर ऑल अराउंड द वर्ल्ड अ वेरी वेरी हैप्पी मदर्स डे. वहां अग्री नहीं का सिडनी से रचिन और मालती प्रसाद की ओर से और यही कहना है उनका कि दे आर हैविंग अ पार्टी ऑन देयर टुनाइट, एंजॉय दैट, एंजॉय हैप्पी मदर्स डे पार्टी. और चलते हैं आप सभी की फरमाइश पर चलते हैं अगला गीत आपके लिए है मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, जुबिन नौटियाल की आवाज़.

माँ के बराबर कोई ने ब्यूटीफुल सॉन्ग जुबे नटियाल के आवाज में आपने सुना। बहुत प्यारा सा गीत फरमाइश आई थी हमारे पास सिडनी से, ग्रीन एका सिडनी से, रजन और मालती प्रसाद उनके परिवार की ओर से। और यही कहना चाहते हैं कि पार्टी जोन दिया, एंजॉय। आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्बानी 17.1 किलोहर्ट्ज़ पर, हमारे स्टूडियो 17 मास रॉक्स ब्रिस्बेन से। 25 मिनट हो गए ब्रिस्बेन टाइम दोस्तों, 3 बजकर। चलते हैं अगला गीत जो हमारे पास फरमाइश आई है स्काबरा रेड क्लिफ से, ब्रिज और शैली कुमार की ओर से। आप सुनना चाहते हैं ले लो दुआएं माँ बाप की।

ब्यूटीफुल सॉन्ग रफी साहब की आवाज में आपने सुना, बहुत प्यारा संगीत है जिसे फरमाइश करने वाले थे स्काबरा रेड क्लिप से ब्रिज और शैली कुमार। हम चलते हैं अगली फरमाइश की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। इसी के साथ साथ हमारे स्टूडियोज में 3:30 बज चुके हैं ब्रिस्बेन टाइम। आप सुन रहे हैं रेडियो विस्वानी, आपकी अपनी पहचान, और ये शाम का सफर साथ है हमारा आपका ठीक 5 बजे तक। अगला गीत जो हमारे पास है कैडरन पार्क से है जोनी और सविता की ओर से, साथ साथ में जिम बुम्बा के सोनिया की ओर से आपकी फरमाइश है, लेकिन मां नहीं मिलती।

किशोर आशा की आवाज का सॉन्ग आपने सुना और फिल्म का नाम था जैसे को तैसा। फरमाइश आई थी हमारे पास कैडरन पार्क से जोनी और सविता की ओर से। चलते हैं दोस्तों द गैप की ओर। द गैप से अगली फरमाइश है हमारे पास ध्रुव और अरुणा की ओर से। आप दोनों के लिए अगला गीत आप माँ पर सुनना चाहते हैं, आपके लिए बहुत प्यारा सा गीत है। अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी माँ, दुनिया भर की खुशियां हमको देने वाली कौन है माँ।

0: शैलेंद्र सिंह की आवाज का ब्यूटीफुल सॉन्ग, जिसे फरमाइश करने वाले थे ध्रुव और अरुणा फ्रॉम द गैप।
1: Celebrate Mum this Mother's Day with Digicel. Digicel is giving away cash prizes when you send top up or money transfer to My Cash Wallet in the Pacific. Simply send $20 or more Digicel top up or send $300 or more money transfer from any of our money transfer partner websites to your family and friends in the Pacific with a My Cash Wallet. And you enter the draw to win one of 15 $500 cash prizes. Send a $20 top up or $300 money transfer today for your chance to win $500 cash to celebrate Mum this Mother's Day. Terms and conditions apply.
2: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.
0: रफी साहब की आवाज का अगला गीत की फरमाइश हमारे पास आई है, और गीत की बोल भी क्या है, मुझे दर्द ये दिल पता न था, जिसे फरमाइश करने वाले जीबंग से टॉम मनीराम।

और इस गीत की फरमाइश आई थी जी बंग से टॉम मनीराम की ओर से। हम दोस्तों चलते हैं सैक्रामेंटो यूएसए की ओर। अगली फरमाइश है हमारे पास लता जी की आवाज का गीत, और फरमाइश करने वाली है ललिता गौतम, रहे ना रहे हम।

बहुत प्यारा सा गीत लता जी की आवाज में आपने सुना, जिसकी फरमाइश किया था ललिता गौतम फ्रॉम सैक्रामेंटो यूएसए। चलते हैं अगला गीत जो है दोस्तों, बहुत ही प्यारा सा गीत है हमारे पास, लेकिन इसके लिए हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं कि जैसे आपको शायद पता है, बहुत से लोगों को पता है कि कल एक फंक्शन हुआ था एकता वुमेन्स ग्रुप, जी हाँ एकता वुमेन्स ग्रुप इन इंडियन सिटीजन, और जिसकी वहाँ पर प्रेसिडेंट थी रोशनी शर्मा। थैंक यू रोशनी फॉर इन्वाइटिंग। मैं यही कहना चाहती हूँ कि 100 लोगों के बीच में बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज हुआ। इट वॉज ब्यूटिफुल लंच और इट वॉज डोर प्रेजेंस एंड प्रेजेंस गिव्स वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड एवरीबॉडी इंट्रोड्यूस ईच अदर, एवरीबॉडी वॉज फ्रेंडली एंड बहुत अच्छी लगी। और इतना प्यारा सा पहली बार मदर्स डे सेलिब्रेशन ऑर्गेनाइज किया उन्होंने कि सभी ने बहुत खुशी से, मेरे ख्याल से शायद वहाँ पर अबाउट 100 पीपल थे, और लंच वॉज ब्यूटिफुल, स्नैक्स वॉज ब्यूटिफुल, एवरीथिंग वॉज रियली रियली एन्जॉयबल। तो रोशनी शर्मा, थैंक यू सो मच फॉर ऑर्गेनाइजिंग, और जितने भी एकता वुमेन्स ग्रुप के जितने भी मेम्बर्स थे, थैंक यू सो मच फॉर ऑर्गेनाइजिंग दैट ब्यूटिफुल मदर्स डे सेलिब्रेशन। और चलते हैं आप सभी की पसंद पर, आज हमें सुन रही रोशनी शर्मा फ्रॉम रनकोन, और उनकी फंक्शन कल हुई थी वहाँ रनकोन स्टेज स्कूल निमिस रोड में। तो चलते हैं आप सभी की फरमाइश पर, खास फरमाइश किया रोशनी शर्मा फ्रॉम एकता वुमेन्स ग्रुप जो प्रेसिडेंट है। पहले हम कहना चाहते हैं, सूरज के पहले किरण हो तुम, कड़ी धूप में धनी छाव हो तुम, ममता की जीवत मूरत हो तुम, आंखों से झलकती प्यार हो तुम, जग से प्यारी हो तुम, प्यार का बेहतर सागर हो तुम माँ। हैप्पी मदर्स डे।

बहुत प्यारा से गीत जिसे मैंने लिया था फिल्म करण अर्जुन से, और खास फरमाइश हमारे पास आई थी रोशनी शर्मा की ओर से। और एक बार फिर हम ये कहना चाहते हैं कि कल जो इवेंट हुआ था इंडियन सीनियर सिटीजन की ओर से, और रोशनी डेडिकेट कर किया था इस गीत को सभी वुमेन्स एकता ग्रुप जो वुमेन्स जितने भी मेंबर्स हैं सभी को इस गीत में याद किया था। और यही कहना चाहते हैं कि वंस अगेन की जो मदर्स डे लंच उन्होंने ऑर्गेनाइज किया, इट वाज ब्यूटीफुली डन। आप सुन रहे हैं रेडियो विस्वानी, आपकी अपनी पहचान। हम चलते हैं मेनली वेस्ट की ओर। मेनली वेस्ट से फरमाइश है मदर्स डे सॉन्ग पर, और किसने फरमाइश किया है? लक्ष्मी, आपके लिए अगला गीत।

0: बहुत प्यारे गीत लता जी की आवाज का मैनली वॉइस से हमारे पास फरमाइश आई थी और फरमाइश करने वाली थी मैनली वॉइस से लक्ष्मी।
1: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
2: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
1: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
2: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
1: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
2: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
3: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400644 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
4: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती
5: है। मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निःशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
1: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
2: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
1: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
2: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
1: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
2: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
3: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400644435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
4: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
0: रेडियो विस्पानी पर दोस्तों बस 3 मिनट हो गए हैं 4:07 हमारा आपका ठीक 5 बजे तक है शाम का सफर। रेडियो विस्पानी अयम है और आज आपके साथ सुबह मदर्स डे पर एक खास प्रोग्राम हमारे साथ सुन रहे हैं। डेडिकेशन फरमाइशी है, अगर आपकी कोई अपनी ही फरमाइश है, क्योंकि आज माओ के लिए बहुत खास दिन है सभी को पता है, और अगर आपकी कोई अपनी फरमाइश है तो आप हमें जरूर डेडिकेट कर सकते हैं या फरमाइश कर सकते हैं। 3279-1701 हमारा स्टूडियो नंबर है, हमारे मोबाइल पर आप SMS कर सकते हैं। और आज आपके साथ चलते हैं, याद करेंगे जो लोग भी, वैसे मेरे पास भी माँ नहीं है, बहुत से लोग जो है थोड़े से इमोशनल है, बहुत सारे से लोग जिन्होंने हमें बताया माँ नहीं है। जब कल मैं वहाँ पर एकता शो पर गई थी मदर्स डे लंच पर, तो कितने भी जो वहाँ पर लोग थे जो स्पीच देते हुए रो पड़े थे, तो मुझे बहुत दुख हुआ। बहुत से लोग जो वहाँ पर थे जिनके पास माँ नहीं थी। चलते हैं आज जो अगला गीत हमारे पास है, उनके पास माँ नहीं है, लास्ट ईयर सिडनी में उनकी डेथ हो गई है और माँ को याद करी है कामनी नारायण फ्रॉम सैक्रामेंटो USA, उनके बहन प्रवीणा फ्रॉम ऑकलैंड न्यूजीलैंड में हमारे साथ जुड़ी है, और साथ साथ में उनकी बहन आशा एंड सूजी फ्रॉम सिडनी। याद करी सभी बहनें अपनी माँ को जो आज उनके साथ नहीं है।

ब्यूटीफुल सॉन्ग दोस्तों, बहुत प्यारा सा गीत। इसकी फरमाइश हमारे पास आई थी वहाँ सेक्रामेंटो यूएसए से, जहाँ मैं सुन रही है कामनी, और जिनकी माँ नहीं है, लास्ट ईयर उनकी माँ की डेथ हो गई है, और साथ साथ में उनकी बहन जो वहाँ पर प्रवीणा न्यूजीलैंड में हमें सुन रही है, अपने माँ को याद किया है, लव यू माई इन हेवन। साथ साथ में उनकी बहन है आशा एंड सूजी फ्रॉम सिडनी, जो मैं सुन रही है। अब हम सभी माता को यही कहना चाहते हैं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। चलते हैं अगली फरमाइश की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगली फरमाइश है हमारे पास आज फिर से, जहाँ पर कुछ लोग गैदा हुए और हमारा प्रोग्राम सुन रहे। थैंक यू सो मच फॉर योर फीडबैक आउट देयर। वहाँ पर है एशरीन, अकरम, शेरुल, अनवर, आशिक, आसमा एंड आदम। आप सभी ने रिक्वेस्ट किया है अगला मदर्स डे सॉन्ग, तो चलते हैं आप सभी की फरमाइश पर सुनते हैं अगला गीत।

ब्यूटीफुल सॉन्ग और हमारे साथ शामिल हो गए थे इस गीत में वहाँ पाकिस्तान से आशिक आसमा अशरीन और रोन साथ में अकरम शहरुल अनवर आदम जो हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं और आप सुन रहे हैं रेडियो विस्वानी आपकी अपनी पहचान। इस वक्त 4:15 बज चुके हैं दोस्तों हमारे स्टूडियोज के घड़ी पर ब्रिस्बेन टाइम है और साथ रहेगा हमारा आपका ठीक 5 बजे तक और आज आपके साथ रेडियो विस्वानी एम परसू आप एक खास प्रोग्राम हमारे साथ मदर्स डे पर जुड़े हुए हैं। चलते हैं जिल्मिया की ओर दोस्तों जिल्मिया से हमारे साथ शामिल हो गए माला एंड विजय और आज इस गीत को डेडिकेट किया है उन्होंने अपनी सासू माँ और अपनी मामी को सविता को जो कैडरन पार्क में हमें सुन रही हैं। आपके लिए अगला गीत

प्रॉब्लम तलाश का गीत, ब्यूटीफुल सॉन्ग आर डी बर्मन की आवाज में आपने सुना। जिल में ऐसी फरमाइश आई थी हमारे पास माला चंद और साथ में विजय की ओर से, और इन्होंने इस गीत को डेडिकेट किया था अपनी मामी को यहाँ केडुन पार्क में। सविता के लिए आप सुन रहे रेडियो विस्वानी 79.1 किलोहर्ट्ज पर, हमारे स्टूडियोज 17 माइल्स रॉक्स ब्रिस्बेन से आज आपके साथ सु। और आज पहली बार हमारे साथ जुड़ी है अल्पना फ्रॉम 8 माइल्स प्लेन्स। अल्पना, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी एंड थैंक यू फॉर योर ब्यूटीफुल फीडबैक। और दे अल्पना, चलते हैं आपकी फरमाइश पर, सुनते हैं अगला गीत।

0: ब्यूटीफुल सॉन्ग पर्दे पर प्रियंका चोपड़ा के लिए, और आज हमारे साथ जुड़ी हुई अल्पना फ्रॉम एट मास प्लेन्स. थैंक्स अल्पना, यू गॉट अ ब्यूटीफुल चॉइस. मुझे भी गीत बहुत अच्छी लगी. आप सुन रहे हैं रेडियो बिस्वानी.
1: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
2: Hi, this is Amitabh Bachchan.
3: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी.
4: Hi guys, I'm Manmeet, one of the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी.
5: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी.
6: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी.
7: To everyone tuning into Radio ब्रिस्वानी, this is Alia.
8: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी.
9: To everyone tuning into Radio ब्रिस्वानी, this is शाहरुख खान.
10: Hi, this is Ajay
0: Devgan,
10: और आप सुन रहे हैं रेडियो
0: ब्रिस्वानी. And I'm Sue, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी. साथ ही हमारा दोस्तों, आपका हमारा ठीक 5 बजे तक सिर्फ हाफ एन आवर हमारे पास समय बचा है, तो चलते एक ऐसी गीत की फरमाइश हमारे पास आई है, और एक गीत है खास करके वहाँ फरमाइश किया है फॉरेस्ट लेक से हाफिज अली खान, जबीदा खान, और याद किया है आज जिनके पास भी माँ है, जो भी माँ आज नहीं इस दुनिया में, सभी माँ के लिए जो आज हमारे साथ नहीं, यही कहना चाहते हैं कि वो कहीं भी रहे खुश रहे, ऊपर वाले उनके आत्मा को शांति दे. और आपने जो गीत को फरमाइश किया है रफी साहब की आवाज का, एक ब्यूटीफुल सॉन्ग है, कैसे कटेगी, बहुत प्यारा सा गजल सॉन्ग है. हफीज अली खान, जबीदा खान फ्रॉम फॉरेस्ट लेक ने इस गीत को फरमाइश किया.

जी हाँ, रफ़ी साहब की आवाज का ब्यूटीफुल सॉन्ग और इस गीत को फरमाइश करने वाले थे वहाँ फोरेस्ट लेक से हफीज अली खान और जबीदा खान। और इस गीत में उन्होंने याद किया जितने भी माँ आज यहाँ इस दुनिया में नहीं है और यही कहना चाहते हैं वो कहीं भी रहे खुश रहे। आप सुन रहे हैं रेडियो विश्वानी, आपकी अपनी पहचान।

दोस्तों, इस गीत को मैंने लिया था नागपुरी एल्बम से। और आपको पता है कि मेरा सैटरडे प्रोग्राम होता है 1 o'clock से पार्टी टाइम पर, और इस सैटरडे को मेरा प्रोग्राम मिस हो गया, इसीलिए मुझे थोड़ा सा मिस हो रहा है पार्टी टाइम। तो मुझे ऐसा फील होता है कि आई एम नॉट डूइंग अ प्रोग्राम। सो कुछ भी होता है तो मैं बीच बीच में कुछ होता है मैं अपना प्रोग्राम में कुछ फास्ट सॉन्ग जरूर ही करना चाहती हूँ। चलते हैं लोग इन सेंट्रल की ओर। दोस्तों, हमारे पास डेडिकेशन है मदर्स डे के सुधीर और कला की ओर से, संजय शालविन शिवानजी की ओर से। और आज डेडिकेट कर रहे हैं इस गीत को सुधीर और कला अपनी माँ को, और साथ साथ में संजय शेल्बिन और शिवानी, सॉरी साथ में है जयस, डेडिकेट करें अपने नानी को इस गीत को। चलते हैं अगला गीत में, आप सभी को शामिल करते हैं। हैप्पी मदर्स डे टू यू ऑल।

बात पर रसिगे दोस्तों, आपने सुना माँ तेरी ममता कितना प्यार जताती है। लोगन सेंट्रल से हमारे पास कॉल आई थी सुधीर कला, संजय शेल्विन शिवांजे और जेस की ओर से अपनी माँ को आज याद किया था, डेडिकेट किया था इस गीत को। हैप्पी मदर्स डे टू यू टू ऑल। आप सुन रहे रेडियो विस्वानी, आपकी अपनी पहचान और साथ हमारा आपका दोस्तों। ठीक 5 बजे तक रेडियो विस्वानी एम हमारे स्टूडियो 17 मार्च रॉक्स ब्रिस्बेन से आप सुन रहे हैं। ब्रिस्बेन टाइम इस वक्त हमारे स्टूडियोज में बस 20 मिनट रह गए हैं 5 बजने में। हम चलते हैं अगला गीत की फरमाइश है हमारे पास सैक्रामेंटो यूएसए से, और कामनी नारायण एक बार फिर सुनना चाहती है अगला गीत।

0: हमसे खता।
1: अरे पर्दे बनन के लिए रफी साहब की आवाज। फिल्म का नाम तीन देविया। एक बार फिर हमारे साथ शामिल हो गए थे इस गीत में। इस गीत को फरमाइश करने वाली थी वहाँ सैक्रामेंटो यूएसए से कामिनी नारायण। हम चलते हैं दोस्तों कैलिफोर्निया यूएसए से। अगली फरमाइश है हमारे पास मैक्स प्रसाद की ओर से। मैक्स लेट्स रॉक।

0: DJ Jakir from Assam.
1: शामिल हो गए थे हमारे साथ मैक्स प्रेस साथ इस गीत में जो हमें सुन रहे हैं कैलिफोर्निया यूएसए में. और दोस्तों बस 4:45 बजने ही वाले हमारे स्टूडियोज के घड़ी में ऑकलैंड न्यूजीलैंड की ओर चलते हैं हम, जहां से हमारे पास मदर्स डे की डेडिकेशन आई है और डेडिकेट करने वाले हैं अपनी मॉम को, अपनी प्यारी सी माँ को. किसने आज याद किया है? जी हाँ, बहुत से लोग हैं जो वहां पर हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं. दिवेन एंड फैमिली, साथ में राजीव एंड फैमिली, जितेन एंड फैमिली, आशा एंड फैमिली एंड ऑल द ग्रैंड चिल्ड्रन. तो चलते हैं आप सभी की ओर से अगला गीत जो है सुनते हैं. कौन सा गीत है? तारे जमी पर. हैप्पी मदर्स डे टू योर मम्मी इन ऑकलैंड न्यूजीलैंड. एक बार फिर साधना यहाँ हेरिटेज पार्क से अपनी माँ को बहुत सारे से प्यार भेज रही है और ये कहना चाहती है, लव यू मॉम.
2: हो गया बेटा, आ जाओ.

0: मेरी माँ।
1: पेरफुल सॉन्ग फिल्म का नाम था तारे जमी पर और बहुत से लोग इस गीत में हमारे साथ शामिल हुए हैं। ऑकलैंड न्यूजीलैंड में हमारा प्रोग्राम सुन रहे दिवेन और उनके परिवार, साथ में राजीव एंड फैमिली, जितेन एंड फैमिली, साथ में आशा एंड फैमिली और यहाँ ब्रिस्बेन से साधना एंड ऑल हर गर्ल्स आर सेंडिंग ऑल हर बेस्ट एंड लव रिगार्ड्स टू हर मॉम ब्यूटिफुल नानी एंड हर मॉम इन ऑकलैंड न्यूजीलैंड। हैप्पी मदर्स डे टू यू ऑल।
2: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
3: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
2: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
3: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
4: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है, सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
2: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
4: अच्छा, वो क्या?
2: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
4: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
2: अरे रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

इसी के साथ साथ दोस्तों हमारे स्टूडियो में 5 ही बजने वाले हैं। जो आखिरी गीत है आप सभी के लिए हम यहाँ से भेज रहे हैं जिन्होंने आज हमारा साथ दिया। थैंक यू सो मच एवरीवन। आई गॉट अ वेरी बिग फीडबैक हियर। आई लव यू ऑल। आई नीड दैट फीडबैक। थैंक्स फॉर एंजॉयिंग द प्रोग्राम एज वेल। हमारी अगली मुलाकात है नेक्स्ट सैटरडे 1 PM से शनिवार मस्ती म्यूजिक पर। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और याद रहे हमारे बाद 5 बजे से आपके साथ हो जाएगी शशि चौहान साथ, उनका जरूर दीजिएगा। नमस्ते, खुदा हाफिज़, टेक केयर, लव यू ऑल, गुड बाय।

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

इस मदर्स डे को बनाए और भी स्पेशल डिजिसेल के साथ। बस भेजे $20 या उससे ज्यादा का टॉप अप या $300 या उससे ज्यादा का कैश ट्रांसफर इनकी किसी भी पार्टनर वेबसाइट से माई कैश वॉलेट के साथ टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स इन द पैसिफिक, और आपका नाम तुरंत जाएगा ड्रॉ में टू विन वन ऑफ द 15 $500 कैश प्राइज। तो $20 का टॉप अप भेजे या $300 का कैश और डीजी सेल के साथ मौका पाएं जीतने का $500 कैश। टीज़ एंड सीज़ अप्लाई।

हम पानी में वापस जा सकने के बारे में उत्साहित हैं, लेकिन हमें सुरक्षित रहने की आवश्यकता है। हमेशा बच्चों के साथ रहें, शराब नहीं पिएं, मछली पकड़ते या नाव के सवारी करते समय लाइफ जैकेट पहने रहें, मौसम के बारे में पहले से पता करें, कभी भी अकेले पानी में नहीं जाएं। रॉयल लाइफ सेविंग चाहता है कि आप सुरक्षित तरीके से पानी का आनंद उठाएं।

मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

0: नारा
1: जिससे वो अपनी तन का गिफ्ट ले लेंगे।
2: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
1: अच्छा वो क्या?
2: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन और वो भी फ्री में।
1: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
2: अरे रिसीवर्स अब कैश पिकअप बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsog.co.in है। भारत में नंबर +918-448-381-360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470-631-801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
2: ओमसॉग, केयरिंग विद डिग्निटी।

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270 35 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270 35। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270 35, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400644 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज RaniCreations.com, द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी, सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। प्री सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। प्री सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 3630-5438 या मोबाइल 0415

0: Confused?
1: अरे इसमें कन्फ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं, दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
0: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व, पर एड्रेस?
1: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल prince jewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।

0: ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: अरे बोलना, मैंने उसे देखा तो ऐसा लगा जैसे क्या?

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग।

नमस्कार, वेलकम बैक रिजी ब्रिस्फानी के सफर में। एक बार फिर से आज आप हैं सताक्षी के साथ। जी, आपके वीकेंड्स हैं और हर वीकेंड्स हम लेकर आते हैं आपके लिए फरमाइशी गीत, जहां हम प्ले करते हैं आपकी पसंद के गाने। लेकिन आज का फरमाइशी गीत बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि बात है माँ की। और जब माँ की बात होती है तो एक ही बात याद आती है कि मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। जी, दुनिया का हर एक बच्चा जिसकी नजर में उसकी माँ ही दुनिया की सबसे अच्छी माँ है, वो माँ जिसने उसे संभाला है, सजाया है और जिंदगी का सबक सिखाया है। माँ ही वो पहला स्कूल होती है जहाँ बच्चा न सिर्फ थोथली आवाज में बोलना सीखता है, बल्कि माँ से ही वो अपने संस्कारों को सीखता है। अपने कल्चर की समझ उसको माँ से ही आती है, और इसीलिए माँ ही वो शब्द है जो कोई भी बच्चा, चाहे किसी भी जबान को, किसी भी भाषा को बोलता हो, वो सबसे पहले अपनी जबान से माँ बोलता है। तो उसी माँ को आज हम सेलिब्रेट करते हैं हमारे रेडियो ब्रिस्फानी पर फरमाइशी गीतों में, क्योंकि आज है मदर्स डे। तो सबसे पहले तो दुनिया भर की सभी माओं को नमन करता है रेडियो ब्रिस्फानी। आप सबको अ वेरी हैप्पी मदर्स डे। और हम विश करते हैं कि यार हर माँ का अपने बच्चे पर साया हमेशा बना रहे, क्योंकि माँ ही वो है जहाँ ईश्वर नहीं पहुंच पाता है तो वो उसकी मौजूदगी दर्ज कराता है, और आपके बिना बच्चे बिल्कुल तन्हा हो जाते हैं। चलिए फिर शुरुआत करते हैं फरमाइशी गीतों की मदर्स डे के मौके पर, और आगे बढ़ते हैं इस ट्रैक के साथ। Keep listening to Radio Brisbane 1701 AM।

मदर्स डे के मौके पर आप सुन रहे हैं फरमाइशी गीत। जी हाँ, रेडियो प्रस्वानी 1701 AM पर फरमाइशी गीतों के साथ ही सताक्षी आपके साथ आगे चल रही है, आगे बढ़ रही है। और आज का पहला मेल लेने का ये वक्त है। तो आज की पहली मेल हमें किसने की है? आज की पहली मेल मुझे जो मिली है वो है राजीव। और राजीव का कहना है कि सताक्षी, आज फरमाइशी गीतों के लिए मैं शायद कुछ डिफरेंट लिखने जा रहा हूँ जो कोई भी नहीं लिखेगा। मेरी मॉम हमेशा मेरी शादी की फिक्र करती रहती है, उन्हें हमेशा ये टेंशन रहती है कि मेरी शादी कब होगी। तो मम्मी, अब मैंने अभी एक बढ़िया सी लड़की ढूंढ ली है, तो तुम भी सास बनने के लिए रेडी हो जाओ और टेंशन छोड़ दो। और सताक्षी, इसी बात को बताने के लिए फिल्म दीवाना मस्ताना से आप एक गाना सुनवा दीजिए, ओ मम्मी मम्मी। बहुत खूब भाई राजीव, बड़ा मजा आया आपका मेल पढ़ के, और आपने तो मदर्स डे की डेफिनेशन एकदम चेंज कर दी। लेकिन सच में माओ को सबसे ज्यादा बच्चों के फ्यूचर से भी ज्यादा, मैं कहूंगी, उनकी शादी की चिंता रहती है। सो यस, आपकी मॉम के नाम ये गाना मैं जरूर प्ले करूंगी, एंजॉय कीजिए। और आपकी मम्मी को एक बार फिर से हम सबकी तरफ से अ वेरी हैप्पी मदर्स डे।

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी advice है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का vast experience है और law की entry cases को handle करने में उनकी expertise है. Criminal law, domestic offence, traffic drug offence में 12 साल से ज्यादा का rich experience. और तो और conveyance, family law, immigration laws में भी भारद्वाज and associates के lawyers का vast experience है. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks Atanya, I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: फरमाइशी गीत, इसी सफर को आप सुन रहे हैं आज रेडियो प्रस्वानी पर एक बार फिर से सताक्षी के साथ. और आज का फरमाइशी गीत बहुत ही स्पेशल और खास. आज है मदर्स डे और मदर्स डे आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं फरमाइशी गीतों के सफर में. वैसे अगर आप भी अपनी मॉम को कहना चाहते हैं हैप्पी मदर्स डे बॉलीवुड के गानों के जरिए तो आप हमसे जुड़ सकते हैं. लिख भेजिए हमें रेडियो प्रसारी के फेसबुक पेज या वेबसाइट पर अपना मैसेज और अपनी मॉम की पसंद का गाना. स्टे ट्यून्ड, रेडियो प्रसारी आपके साथ है. सताक्षी

मेरे पास है मदर्स डे पर आज अगला मेल और ये है पुष्पेंद्र। पुष्पेंद्र ने एक्चुअली बहुत ही प्यारा सा एक मैसेज भी लिखा है अपनी मॉम के लिए और आप कहते हैं कि मॉम आई लव यू। कई बार ऐसा होता है कि मैं बहुत इरिटेट हो जाता हूँ और तुमसे बहुत रूडली बात करता हूँ, बट स्टिल आई लव यू सो मच और मेरी हर नादानी को प्लीज माफ कर देना और ऐसे ही मेरे साथ हमेशा रहना। और आपने आगे लिखा है कि सताक्षी आज मदर्स डे के मौके पर प्लीज प्लीज प्लीज मेरी मॉम के लिए प्ले कर दीजिए, तो कितनी अच्छी है। तो चलिए पुष्पेंद्र, इतने प्यारे से मैसेज के बाद हमारी तरफ से भी आपकी मॉम को अ वेरी हैप्पी मदर्स डे और प्ले करती हूँ तो कितनी अच्छी है लता मंगेशकर की आवाज में ये ट्रैक। सुनिए और सुनते रहिए सताक्षी के साथ फरमाइशी गीत।

0: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
1: रेडियो प्रसारणी 1701 AM पर फरमाइशी गीत आप सुन रहे हैं सताक्षी के साथ। आपकी फरमाइशियों को आज हम फिर से एक बार प्ले कर रहे हैं आपके लिए, लेकिन आज ये फरमाइशी बहुत ही खास है। आज है मदर्स डे और मदर्स डे हम फरमाइशी गीतों में सेलिब्रेट कर रहे हैं। वैसे

फरमाइश की तो मैं इस वक्त मेरे पास जो अगला मेल है दोस्तों वो है सोनिका। और सोनिका ने ये मेल हमें किया है ब्रिस्बेन से ही। सोनिका कहती है कि सताक्षी, मैं अपनी मॉम से दूर हूँ और मम्मी के साथ गुजारा हर एक लम्हा जो है वो बहुत ही खास हो जाता है। ऐसा कहा भी जाता है कि बेटियां जो है वो माँ की परछाई होती है। आज मेरी भी बेटी जब है तो मैं भी यही फील करती हूँ कि सच में बेटियां माँ की परछाई होती है। बट स्टिल मैं अपनी मॉम को बहुत मिस करती हूँ, स्पेशली जब ये मदर्स डे आते हैं या उनका बर्थडे आता है या कोई खास ओकेजन होता है तो वो याद और भी बढ़ जाती है। सो प्लीज आज मैं भी अपनी मॉम को एक गाना डेडिकेट करना चाहती हूँ उनके लिए, प्लीज प्ले कर दीजिए मेरी माँ। तो चलिए सोनिका, आपकी फरमाइश पर खास ये गाना आपके और आपकी मॉम के लिए हम प्ले करेंगे, मेरी माँ। बहुत ही खूबसूरत गाना है और मदर्स डे की जो वाइब्स हैं ये गाना उनको और भी इन्हांस कर देगा। एंजॉय कीजिए हमारे साथ इस ट्रैक को और सुनते रहिए फरमाइशी गीत सिर्फ और सिर्फ सताक्षी के साथ रेडियो ब्रिस्बेन पर।

0: कैसा लगा मामा?
1: क्या
0: मेरा गाना, मेरा पहला परफॉर्मेंस?
1: अरे सुनाई कहाँ दिया ये नालायक विवेक, अरे बैटरी लाना ही भूल गया।
0: क्या यार विवेक?
2: अरे क्या भैया, मुझे क्या बोल रहे हो? आपको लाने को बोला था ना बैटरी।
0: वही काम सब तो मैं ही करूंगा ना मामा, तू लाओ इधर। चलो मामा, जल्दी लगाओ।

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet, one of the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan.
4: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
6: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
7: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane से.
8: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
9: Hi, this is Ajay Devgn और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.
10: रेडियो ब्रिसवानी 1701 AM पर आप सुन रहे हैं सताक्षी के साथ फरमाइशी गीत. आप सबको एक बार फिर से, सारी मॉम्स को एक बार फिर से मदर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं. विश यू ऑल अ सो ऑल मदर्स विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी मदर्स डे वंस अगेन. आइए आगे बढ़ते एक और ट्रैक के साथ, उसके बाद देखते हैं कि हमारे पास आज अगला मैसेज किसका है मदर्स डे पर. के प्लस रेडियो ब्रिसवानी आपके साथ है सताक्षी.

रोहित नंदन का है मेरे पास आज का ये अगला मेल और आपने हमें लिखा है कनाडा से। और रोहित कह रहे हैं कि सताक्षी मम्मा के साथ बहुत शरारतें की हैं मैंने, मेरा बहुत ही अच्छा पीरियड बीता है, मैंने अपनी मम्मी को बहुत परेशान किया, बहुत सताया है, वो हमेशा डंडी लेकर मेरे पीछे भागती थी और आज जब वो बीमार हैं मुझे बहुत अफसोस होता है कि मैं उनके पास नहीं हो पाता हूँ, बिकॉज काम भी है और अगर मैं उनके पास गया तो फिर काम जो है वो करना मुश्किल हो जाएगा, बट स्टिल मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ और उनके लिए ही आज उनसे दूर हूँ। मैं अपनी माँ को जब याद करता हूँ तो एक ही गाना जहन में आता है, तेरी उंगली पकड़ के चला। तो प्लीज मेरे लिए ये गाना प्ले कर दीजिएगा और मेरी मॉम आज ये गाना जरूर सुने। बहुत ही जल्द मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं प्रॉपर वापस सेटल हो जाऊँ मॉम के पास ताकि मैं उनका अच्छे से ख्याल रख पाऊँ। रोहित बस ये जो ख्याल है, ये जो फीलिंग है ना आपकी कि आप जल्दी से सेटल हो जाएं और आप उनका ध्यान रखें, ये भी बहुत है। और यस, कभी कोई एक ऐसा मौका मिलता है जब आपको लगता है कि बाहर जाकर ही आप काम कर सकते हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपके दिल में ये जज्बात है कि आपको अपनों के साथ रहना है तो फिर थोड़ा कम में भी गुजारा किया जा सकता है ना। बस ये जो साथ है आपका आपकी मॉम के साथ, ये भी बहुत स्ट्रांग है। और कहते हैं ना कि हर एक साथ निभाने का बार बार मौका नहीं मिलता है, तो अगर ये मौका मिले तो उनका जरूर ख्याल रखिए और उनके साथ रहिएगा। चलिए आपको आगे लेकर चलती हूँ आप ही के पसंद के गाने के साथ, फिल्म लाडला का तेरी उंगली पकड़ कर चला, बहुत ही प्यारा गाना है ये, इसे एंजॉय कीजिए। और आपकी मॉम के लिए खासतौर से गाना हम डेडिकेट कर रहे हैं, इसे एंजॉय कीजिए और सुनते रहिए हमारे साथ फरमाइशी गीत।

0: मौके पर आप सुन रहे हैं फरमाइशी गीत रेडियो प्रस्थानी 1701 एम पर। और इस सफर में आज आप डेडिकेट कर रहे हैं अपनी मॉम को कुछ बहुत ही खूबसूरत गाने। वैसे अगर आपकी भी कोई फरमाइश है, आप भी इस मदर्स डे अपनी मॉम के लिए कोई स्पेशल मैसेज देना चाहते हैं या उनकी पसंद का कोई गाना उनको डेडिकेट करना चाहते हैं, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं रेडियो प्रस्थानी के फेसबुक पेज और वेबसाइट पर। आइए आगे लेकर चलती हूँ आपको इस अगले ट्रैक के साथ। कीप लिसनिंग टू रेडियो प्रस्थानी।
1: उठ सबके कंधे

नमस्कार आदाब, आप सभी का इस्तकबाल। मैं हूं निलय, पल दो पल की महफिल में आपको फिर से मिलने चला आया हूं, आपके इंतजार के लम्हे खत्म करने आया हूं। आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी और ये पल दो पल का खूबसूरत सफर मैं शुरू करूंगा इससे कि अरमान तो बहुत तेजी से आते हैं दिल में, मगर आप सबके लिए ये और मेरे लिए तो है ही खास तौर से कि अरमान तो बहुत तेजी से आते हैं दिल में, मगर फर फर तो गुजरती नहीं है घड़ियां। खास करके चाल में थोड़ी सी मोहब्बत की नजाकत होती है, रंग गुलाबी नहीं होता, थोड़ा सा धानी और पीला, तब न सर्द मौसम न गर्म, न दर्द मौसम न बेदर्द मौसम, मोहब्बत होती है इंतजार। ऐसे में तुम न आए एक दिन का वादा कर दो दिन तलक, जब इतना खूबसूरत इंतजार हो रहा है तो ऐसे में तुम न आए एक दिन का वादा कर दो दिन तलक, हम पड़े तड़पा किए दो दो पहर दो दिन तलक। आहा क्या बात है, तड़प का दर्द भी बेहद मीठा सा होता है, वक्त बहुत ही मध्यम गति से चलता रहता है। पर फिलहाल तो आप निलय के साथ अपने मिलन के लम्हे महसूस कीजिए, ये घड़ियां साथ ही गुजरने वाली हैं, पल दो पल ही सही। कुछ गाने शो की शुरुआत में आपको सुना रहा हूं और उसके बाद भी सुनाता रहूंगा, और जब हम लौट कर आएंगे तो फिर बिताएंगे, गुजारेंगे पल दो पल मिलजुल कर।

वेलकम बैक। जैसा कि मैंने कहा, आगाज हो चुका है इस महफिल का, जिसे आप कहते हैं पल दो पल। रेडियो ब्रिस्वानी पर आपके साथ आपका हम सफर, आपका हमदम, आपका निलय है। और यहाँ पल दो पल ठहर कर आप सुकून महसूस कर लेते हैं। मैं कुछ सुकून महसूस करवा पाता हूँ इतने बेहतरीन नगमे और कुछ बेहद खूबसूरत बातें। ऐसा मुझे लगता है कि मैं खूबसूरत बातें करता हूँ। अगर आपको लगता है कि मैं सही कह रहा हूँ तो मुझे बताइएगा, हौसला अफजाई तो किया कीजिए ना भाई। थोड़ी बात तो अर्ज किया आपके लिए कि देखते हैं ख्वाब में जिस दिन किसकी चश्मे मस्त, देखते हैं ख्वाब में जिस दिन किसकी चश्मे मस्त, रहते हैं हम दो जहां से बेखबर दो दिन तलक। दिल का बदरंग लिबास भी बेहद खूबसूरत होता है, जिसमें इश्क की ताबिश होती है। सूरज की चाहे फीकी या तेज धूप मिले, सबसे ज्यादा चमक होती है उसमें, होती है कि नहीं होती। और इस मौसम में मैं तो कहता हूं कि ये जो मन का मौसम होता है, ये कुछ ऊपर नीचे रहता है। कभी उदास तो कभी बहुत दूर तक उदास ही उदास, खुश तो संसार से परे तक खुश। इसीलिए तो कहता हूं कि ना उम्मीदगी हो या उम्मीद, यही है हर्फ आखिर। गर यकीन हो ये हमें आएगा तू दो दिन के बाद, तो जिए हम और इस उम्मीद पर दो दिन तलक। वैसे मैं आपको इंतजार तो कराता हूं, पर वापस लौट आने के वादे के साथ। तो पल दो पल आप सुनते रहिए, इन पल दो पलों के बाद फिर से हाजिर हो जाएगा आपका निलय। आप हैं रेडियो ब्रिस्वानी पर पल दो पल सुनते हुए मेरे

खुशामदीद, बहुत बहुत स्वागत, आप सुन रहे हैं पल दो पल। इश्क की गलियां हैं यहाँ पर जहाँ हम घूम रहे हैं, हालांकि काफी संकरी होती हैं ये गलियां। जैसा कि कबीरदास जी ने भी कहा है कि प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाए। लेकिन आपके इस प्रेम की गली में मैं आपके साथ हमेशा आ जाऊंगा, फिट हो जाऊंगा। निलय मेरा नाम, बहुत सारे संगीत के साथ लौट आया हूँ रेडियो ब्रिस्वानी पर। वक्त की नामालूम सी छुअन के साथ लौटा हूं मैं, वो दुखाती है कि सहलाती है समझ ही नहीं आता। कभी किसी ने मुझसे कहा था कि संगीत हमेशा सुरूर में सुनना चाहिए, सुरूर जिसमें देह खुद एक ध्वनि यंत्र बन जाए, सारे साजों की झनकार भीतर से मीठे झरने सी फूट पड़े, राग कस्तूरी बन जाए और हम मृग, संगीत बन जाए एक बड़ा समंदर जिसमें हम मछली से तैरते फिरें। लेकिन अगर इश्क हो तो क्या ही बात हो। क्या बात हो जनाब, अभी तो और भी बातें होंगी, मुलाकातें होंगी, लेकिन एक ब्रेक तो यहां पर बनता है। तो ये एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक आ रहा है, लुत्फ उठाइए इस ब्रेक का, इन बेहतरीन नगमों का, और वापस मेरी बातों का भी अगर लुत्फ उठाना है तो लौट कर आइएगा पल दो पल के बाद, पल दो पल में ही।

सुनना सिखाने वालों से। लेकिन उसने ये नहीं कहा था कि इश्क की स्मृतियों से भी पैदा हो जाता है एक गहरा सुरूर। ये मैंने खुद जान लिया था विरह में संगीत सुनते हुए। संगीत की बात लेकर लौट आया हूं मैं पल दो पल के लिए आपके पास। नाम है मेरा निलय, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी। संगीत की बात इसलिए है क्योंकि संगीत ही है जो हमको आपसे जोड़ता है कि नहीं, कनेक्ट करता है। वैसे मैंने नोटिस किया और आपने भी किया होगा कि जब भी विरह वेदना में होते हैं हम, मतलब हम जब अपने प्यार से दूर होते हैं, जुदा होते हैं, तब संगीत सुनते हुए हम ज्यादा संगीत में डूबने लगते हैं, उसके शब्दों के अर्थों को समझने लगते हैं, म्यूजिक के हर नोट में अपने दर्द की धड़कन को महसूस करते हैं। करते हैं ना, संगीत से बहुत ज्यादा कनेक्ट होते हैं हम। मोहब्बत और संगीत का बहुत गहरा नाता होता है, इसलिए हमारे इस दीवाने शो में संगीत रहता ही है। आप हैं पल दो पल पर निलय के साथ। कुछ कहना चाहें तो जरूर हमें बताएगा रेडियो ब्रिसवानी के इसी प्रोग्राम के दौरान। मैं इंतजार करूंगा।

फरियाद की कोई लय नहीं है, नाला पाबंद नय नहीं है, हर चंद एक शय में तू है पर तुझसी कोई शय नहीं है। समझ गए आप? मैं निलय आपसे किसकी बात कर रहा हूं ये समझे कि नहीं आप? इस दुनिया का सबसे बड़ा शायर, जिसने मोहब्बत के चिराग जलाए, जिसने कहा सजदे में न गए तो शिकवा भी न किया कोई। जी हाँ, दीवानगी का हमनाम महबूब शायर मिर्जा गालिब। आज उसी इश्क परस्त के नाम मैं आपको सुनाता हूं। अब जब उनकी बात होती है तो इश्क जो है वो खुद ब खुद चला आता है। मैं कुछ अर्ज कर दूं। कहते हो न देंगे हम दिल अगर पड़ा पाया, गालिब साहब ने लिखा है कि कहते हो न देंगे हम दिल अगर पड़ा पाया, दिल कहां के गुम कीजिए, हमने मुद्दा पाया। इश्क से तबीयत ने जीस्त का मजा पाया, दर्द की दवा पाई, दर्द बेदवा पाया। मिर्जा गालिब थे। उन्होंने इश्क को हर लम्हा जिया, दर्द को हर लम्हा जिया। आज उन्हीं के जरिए इश्क और दर्द बांट रहे हैं हम आपके साथ।

यूं तो मशहूर हैं अधूरी मोहब्बत के किस्से बहुत से, यूं तो मशहूर बहुत हैं अधूरी मोहब्बत के किस्से बहुत से, मुझे अपनी मोहब्बत पूरी करके नई कहानी लिखनी है। भला भला आप सुन रहे हैं लेके साथ। हमारा मानना है कि भैया देखिए, प्रेम का कोई दिन तो तय किया जा नहीं सकता, फिर भी कोई दिन खास हो ही जाता है। जैसे एक दास्तान मुझे याद आ रही है, आपको मैं सुनाता हूँ कि सुबह से जाने कितने दोस्तों ने प्रेम दिवस विश किया लड़की को। लड़की खुशी खुशी सभी की विश का रिप्लाई कर रही थी, लेकिन आखिर लड़की नाच उठी एक मिस्ड कॉल पर। कोई बात ना हुई थी, कोई विश नहीं थी, जस्ट एक घंटी वाला मिस्ड कॉल जो पिछले 10 सालों से बिना नागा आता है। उधर दोस्तों के साथ पार्टी करते, हंसते मुस्कुराते, मगर बेचैन लड़के का वैलेंटाइन एक ब्लैंक मैसेज के साथ ही पूरा होता है। इश्क की दास्तानें अनेक, रूप अनेक, तरीके अनेक, लेकिन खुशबू, खुशबू केवल एक, सबसे अनोखी, सबसे जुदा, सबकी जानी पहचानी। आपके पास ऐसी खुशबू से भरी कोई प्रेम की कहानी अगर है तो हमारे फेसबुक पेज पर अगर हमें बताइएगा, हम इंतजार करेंगे। फिलहाल एक खूबसूरत म्यूजिकल ब्रेक, ब्रेक के बाद आपसे होगी मुलाकात, कुछ और करेंगे बात। यह है रेडियो ब्रिस्वानी पर आपका और मेरा साथ, मैं हूं निलय आपके साथ, स्टे कनेक्टेड।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsog.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
2: ओमसॉग, केयरिंग विद डिग्निटी।
3: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। For best service, complete legal paperwork, marriage certificate and a memorable marriage ceremony, remember the name Parmanand, your professional and friendly civil marriage celebrant since 2003.

वो सजदा ही क्या जिसमें सर उठाने का होश रहे। इजहारे इश्क का मजा तो तब है जब मैं खामोश रहूं तू बेचैन रहे। पल दो पल आप सुन रहे हैं निलय के साथ रेडियो ब्रिस्वानी पर, वेलकम बैक। और हमारे मिर्जा हमारे साथ हैं, मिर्जा गालिब साहब। इश्क में सजदे का जितना असर होता है ना, अक्सर हम मन्नतों के लिए किसी न किसी पीर की मजार टटोलते हैं, दरवेश का दर खटखटाते हैं। हर एक शहर में ऐसी कोई मीनार या मंदिर तो होता है हिंदुस्तान में, जो किसी प्रेमी के लिए खास होता है। कहते हैं कि वहां अगर आप अपने दिल की मुरादें मांगें, आप अपना प्यार मांगें, तो वो आपको मिलता ही है, मिल जाता है। ऐसा हिंदुस्तान के ऑलमोस्ट हर कस्बे में, हर शहर में कोई ना कोई जगह है ही। तो इसी बात पर अर्ज कर देता हूं कि गर मोहब्बत एक इबादत है, मुलाहिजा फरमाइएगा, गर मोहब्बत एक इबादत है तो मोहब्बत के लिए भी इबादत है। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे जब मिलेंगे तो आपसे बहुत सारी और भी बातें करेंगे जो मोहब्बत की हैं, सुरीली सी हैं। मैं उन्हें ले आपके साथ रेडियो ब्रिस्वानी पर। कीप लिसनिंग, कीप एंजॉयिंग।

मेरा गलियों गलियों चर्चा तो सुना ही होगा आपने। मेरा नाम है निलय। नहीं, प्यार करने वालों का चर्चा होता ही है आजकल। तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जुबान पर। बस ऐसे ही प्यार करने वालों के चर्चे शहर में हर जुबान पर होते हैं, हर गली में होते हैं, हर मोहल्ले में होते हैं। शहर की रगों में बहते हुए मुझे महसूस किया होगा आपने भी। इश्कों में, शहर की धड़कनों में भी मैं हूँ। मोहब्बत की बातें, नज़में, तराने, गाने, सब में मैं हूँ। मिर्जा गालिब साहब की चंद शेर के साथ मैं फिर से हाजिर हूँ रेडियो ब्रिजवानी पर। अरे पापा, आपको लग रहा होगा यार निलय खुद की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं पर मुझको इतना यकीन है कि आप मुझे महसूस कर ही रहे होंगे। करें ना, ये बहुत जरूरी है। आप मुझे महसूस कर रहे हैं तो मैं आप ही हूँ, मैं अलग नहीं हूँ, बस आप ही की फीलिंग हूँ। तो जो आप सुन रहे हैं अपनी फीलिंग को सुन रहे हैं, तो जो मैं हूँ वो आप हैं। थोड़ा सा पेचीदा हो गया लेकिन कोई बात नहीं। कुछ अर्ज कर देता हूँ इस बात पर कि तुम ना आए तो क्या सहर ना हुई, तुम ना आए तो क्या सहर ना हुई, हाँ मगर चैन से बसर ना हुई। मेरा नाला सुना जमाने ने, एक तुम हो जिसे खबर ना हुई। मिर्जा गालिब साहब के शेर के साथ आपको छोड़े जा रहा हूं और आपको कुछ और गीत सुनाने जा रहा हूं। आप उन्हें एंजॉय कीजिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे, फिर मोहब्बत की कुछ और बातों को आगे बढ़ाएंगे। यह पल दो पल रेडियो ब्रिजवानी पर।

निलय के साथ आप सुन रहे हैं पल दो पल। वेलकम बैक। आज इस महफिल में मेरे साथ हैं मिर्जा गालिब साहब और बहुत ही खूबसूरत धुने, बहुत सारे सुंदर से वादे, मुलाकातों के हसीन लम्हे, वफा बेवफा और इसके साथ ही कुछ अफसाने भी। तो अर्ज किया है कि तेरे वादे पे जिए हम तो ये जान छूट जाना। गालिब साहब का बहुत ही मशहूर शेर है कि तेरे वादे पे जिए हम तो ये जान झूठ जाना कि खुशी से मर ना जाते अगर एतबार होता। कहूं किससे कि मैं क्या है कहूं किससे मैं कि क्या है, शबे गम बुरी बला है, मुझे क्या बुरा था मरना अगर एक बार होता। मोहब्बत में यही तो होता है, चाहे कितना भी दर्द हो हम उसे जीते भी हैं पूरा, उस दर्द में भी मजा है। क्या आपको नहीं लगता इश्क का दर्द हमें कितना भी सताए हम उसी में रहना चाहते हैं, कितना ही दिल दुखे हम दुख में दुखना ही चाहते हैं। अभी एक फिलहाल ब्रेक ले लेते हैं और ये मोहब्बत भरी बातें यूं ही जारी रखेंगे। रेडियो ब्रिजवानी पर आप सुन रहे हैं पल दो पल निलय के साथ।

पल दो पल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। रेडियो तरंगों के जरिए स्पीकर या फिर ईयरफोन्स के थ्रू आपके कानों में घुलते जा रहे हैं हम, यानी रेडियो ब्रिजवानी और मैं निलय। महसूस कीजिए हमें और हमनवा गालिब को। कहते हैं वो कि जहर मिलता ही नहीं मुझको सितमगर, वरना क्या कसम है तेरे मिलने की कि खा भी ना सकूं। कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती, मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। आगे आती थी हाले दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। है कुछ ऐसी ही बात जो चुप हूं, वरना क्या बात कर नहीं आती। क्यों ना चीखूं कि याद करते हैं, मेरी आवाज घर नहीं आती। हम वहां हैं जहां से हमको भी

जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। गालिब मैं हो गया है आज सारा रेडियो ब्रिस्वानी और आप तमाम सुनने वाले भी। गालिब की ये खूबसूरत बातें और मोहब्बत की बातें इन बेहतरीन तरानों के साथ जारी रखेंगे हम रेडियो ब्रिस्वानी पर। अब बने रहेगा, मैं होने लौटता हूँ पल दो पल की इस महफिल में।

वेलकम बैक। रेडियो ब्रिस्वानी पर आप सुन रहे हैं निलय को पल दो पल के जरिए, और मोहब्बत बहुत सारी है यहाँ पर, ढेर सारी मोहब्बत। उसी के साथ मैं एक बार फिर से हाजिर हो गया हूँ और अर्ज कर रहा हूँ आपके लिए कि है बस कि हर एक उनके इशारे में निशा, और करते हैं मोहब्बत जो गुजरता है गुमा, और दिल से तेरी निगाह जिगर तक उतर गई, दोनों को एक अदा में रजामंद कर गई। वो बादाए शबाना की सरमस्तियां कहां, उठिए अब बस के लज्जते ख्वाबे सहर गई। देखो तो दिल फरेबी ये अंदाज नक्श पा, देखो तो दिल फरेबी ये अंदाज नक्श पा, मौजे खिराम यार भी क्या गुल कतर गई। नजारे ने भी काम किया वां नकाब का, मस्ती से हर निगाह तेरे रुख पर बिखर गई। मारा जमाने ने असदुल्ला खां तुम्हें, गलिब साहब का नाम असदुल्ला खां था, लिखते हैं कि मारा जमाने ने असदुल्ला खां तुम्हें, वो वलवले कहां वो जवानी किधर गई। वाह क्या बात है। इसके बाद एक खूबसूरत म्यूजिकल ब्रेक तो बनता है। गलिब साहब, मैं और आप, ये सब हैं रेडियो ब्रिस्वानी की इस महफिल में जिसका नाम है पल दो पल। लौटता हूं पल दो पल बाद।

लीजिए, एक बार फिर से लौट आया हूँ मैं निलय, लौट कर आपका स्वागत कर रहा हूँ। रेडियो प्रिस्वानी के जरिए आप सुन रहे हैं पल दो पल, मगर वक्त के सितम भी बयां करना चाहता हूँ। देखिए ना कैसे कह रहा है, जाना होगा। लेकिन अगले रविवार का वादा करके जा रहा हूँ, लौटूंगा तो और भी कई बातें होंगी जरूर आपसे। आप बस एक काम कीजिएगा, मुझे अपने पयाम अपने पैगाम भेजते रहेगा। चलता हूँ, फिर होगी मुलाकात अगले इतवार। लेकिन जाते जाते कुछ आपके लिए अर्ज कर जाता हूँ कि हमारा दिल सवेरे का सुनहरा जाम हो जाए, चरागों की तरह आंखें जलें जब शाम हो जाए, कभी तो आसमां से चांद उतरे जाम हो जाए, तुम्हारे नाम की एक खूबसूरत शाम हो जाए, उजाले अपनी यादों की हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। बाय, नमस्कार, खुदा हाफिज़।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से। और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर। याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलनगाबा। ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी, सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

0: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
1: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
0: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
1: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
2: जीवन से भरी तेरी आँखें।

0: तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
0: गो फॉर द बेस्ट वीरे। अतुल भारद्वाज जी नु आज ही कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी इंट्रीकेसीज नु हैंडल करन च वी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वध दा रिच एक्सपीरियंस ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज विच वी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks a ton, Veere. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

0: For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/venus.
1: Hi, this is Amitabh Bachchan.
2: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi guys, I'm Manmeet, one of the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
4: Hi, this is Salman Khan.
5: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
6: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
7: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
8: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane
9: से. To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
10: Hi, this is Ajay Devgan
11: और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.

इस मदर्स डे को बनाएं और भी स्पेशल डिजिसेल के साथ। बस भेजे $20 या उससे ज्यादा का टॉप अप या $300 या उससे ज्यादा का कैश ट्रांसफर इनकी किसी भी पार्टनर वेबसाइट से माई कैश वॉलेट के साथ टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स इन द पैसिफिक और आपका नाम तुरंत जाएगा ड्रॉ में टू विन वन ऑफ द $1,500 कैश प्राइज। तो $20 का टॉप अप भेजे या $300 का कैश और डिजिसेल के साथ मौका पाएं जीतने का $500 कैश। T's and C's apply.

हम पानी में वापस जा सकने के बारे में उत्साहित हैं, लेकिन हमें सुरक्षित रहने की आवश्यकता है। हमेशा बच्चों के साथ रहें, शराब नहीं पिएं, मछली पकड़ते या नाव के सवारी करते समय लाइफ जैकेट पहने रहें, मौसम के बारे में पहले से पता करें, कभी भी अकेले पानी में नहीं जाएं। रॉयल लाइफ सेविंग चाहता है कि आप सुरक्षित तरीके से पानी का आनंद उठाएं।

मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435, याद रहे 0400664435, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज RaniCreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता। लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

0: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
1: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
0: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
1: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।

0: ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: Yes baby, but no compromise with quality and health. हम जाएंगे सिर्फ MC's Indian and Island Food.
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, quality spices, lentils, rice, flour और frozen सब्जी from Fiji and India. Brisbane के best Indian butcher supplying farm fresh goat, lamb, chicken and duck और fresh local produce भी रखते हैं. साथ ही kitchenware and disposable plates की large range किसी भी function के लिए.
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो.
1: MC's Indian and Island Food, serving Brisbane since 1999. Open 7 days. Find us on Facebook or visit website mcsfoods.com.au. 1 by 268 Kingston Road, Slacks Creek, phone number 3804-3818. That's 3804-3818.

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
0: गो फॉर द बेस्ट वीरे। अतुल भारद्वाज जी नु अज ही कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी इंट्रिकेसीज नु हैंडल करन च भी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वध दा रिच एक्सपीरियंस ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज विच भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks a ton, Veere. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: मैडम, आई एम योर ओनली एडम।
1: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
2: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
1: अरे वाह, इनका पता बताना।
2: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Madhvi from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan.
4: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
6: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
7: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane से.
8: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
9: Hi, this is Ajay Devgan
10: और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.

इस मदर्स डे को बनाए और भी स्पेशल डिजिसेल के साथ। बस भेजे $20 या उससे ज्यादा का टॉप अप या $300 या उससे ज्यादा का कैश ट्रांसफर इनकी किसी भी पार्टनर वेबसाइट से माई कैश वॉलेट के साथ टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स इन द पैसिफिक और आपका नाम तुरंत जाएगा ड्रॉ में टू विन वन ऑफ द $15,500 कैश प्राइज। तो $20 का टॉप अप भेजे या $300 का कैश और डीजी सेल के साथ मौका पाएं जीतने का $500 कैश। टीज़ एंड सीज़ अप्लाई।

हम पानी में वापस जा सकने के बारे में उत्साहित हैं, लेकिन हमें सुरक्षित रहने की आवश्यकता है। हमेशा बच्चों के साथ रहें, शराब नहीं पिएं, मछली पकड़ते या नाव की सवारी करते समय लाइफ जैकेट पहने रहें, मौसम के बारे में पहले से पता करें, कभी भी अकेले पानी में नहीं जाएं। रॉयल लाइफ सेविंग चाहता है कि आप सुरक्षित तरीके से पानी का आनंद उठाएं।

मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसोग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसोग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsog.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉग, केयरिंग विद डिग्निटी।

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270 35 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270 35। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270 35, या फिर ईमेल करे permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज rani-creations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी, सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

0: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
1: पतली कमर मटका के
2: हाय हाय हाय हाय हाय
1: नागिन से बल खा के

सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता। लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

0: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
1: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
0: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
1: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
2: करें

0: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
0: गो फॉर द बेस्ट वीरे। अतुल भारद्वाज जी नु अजी कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी इंट्री केसेस नु हैंडल करन च वी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वद्दा रिच एक्सपीरियंस ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज विच वी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks a ton, Veere. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

इस मदर्स डे को बनाए और भी स्पेशल डिजिसेल के साथ। बस भेजे $20 या उससे ज्यादा का टॉप अप या $300 या उससे ज्यादा का कैश ट्रांसफर इनकी किसी भी पार्टनर वेबसाइट से माई कैश वॉलेट के साथ टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स इन द पैसिफिक और आपका नाम तुरंत जाएगा ड्रॉ में टू विन वन ऑफ द $1,500 कैश प्राइज। तो $20 का टॉप अप भेजे या $300 का कैश और डीजी सेल के साथ मौका पाएं जीतने का $500 कैश। टीज़ एंड सीज़ अप्लाई।

हम पानी में वापस जा सकने के बारे में उत्साहित हैं, लेकिन हमें सुरक्षित रहने की आवश्यकता है। हमेशा बच्चों के साथ रहें, शराब नहीं पिएं, मछली पकड़ते या नाव के सवारी करते समय लाइफ जैकेट पहने रहें, मौसम के बारे में पहले से पता करें, कभी भी अकेले पानी में नहीं जाएं। रॉयल लाइफ सेविंग चाहता है कि आप सुरक्षित तरीके से पानी का आनंद उठाएं।

मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
2: ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

आई आई या करूं मैं क्या सुकु सुकु आई आई

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
2: ओमसॉग, केयरिंग विद डिग्निटी।

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: थे।
1: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
2: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
1: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
2: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
1: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
2: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
3: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
4: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडीज, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

आसान हो। दिल को चुराने वालों आंख न चुराओ, नाम तो बताओ, जान पहचान हो, जीना आसान हो।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। ब्रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। ब्रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

0: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
1: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स। साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
0: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
1: एट शॉप 9B सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल prince jewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।

नमस्कार, आदाब, खैर मकदम। रेडियो प्रसवानी 1701 AM पर आपको आपसे मिलवाने, आपको उस ईश्वर से, उस शक्ति से मिलवाने के लिए हम एक बार फिर से आ गए हैं। आप ही के जीवन के आधार को आपको समझाने, जीवन आधार लेकर हमेशा की तरह आज भी इस सफर में सताक्षी आपके साथ है। श्रोताओं, कोई तो है जो इस सृष्टि को चला रहा है, चाहे आप उसे अल्लाह कह लें, ईश्वर कह लें, जीसस कह लें या फिर वाहेगुरु कह लें। कोई तो शक्ति है जिसने हम सबको थाम रखा है और जिसके पास हमारी हर मुश्किल का हल है। आइए उसी आधार को आज हम प्रणाम करते हैं और उसी की आराधना वंदना करते हुए, उसी से दुआ मांगते हुए कि अब जीवन में कोई क्षण कठिन ना आए, बढ़ते हैं सफर में आगे। सुनते रहिए जीवन आधार।

आधार आप सुन रहे हैं रेडियो प्रस्वानी पर सताक्षी के साथ। श्रोताओं, कद बढ़ाना हम सब चाहते हैं, आप सब चाहते होंगे कि आपका कद यकीनन इतना ऊंचा हो कि लोग आपकी इज्जत करें, आपके आते ही उठकर खड़े हो जाएं। यकीन मानिए, कद सिर्फ ओहदे से ऊंचा नहीं होता है, कद तो उसका ऊंचा होता है जो लोगों से झुक कर मिलता है, जिसको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि कौन छोटा है और कौन बड़ा है, सबको बराबर इज्जत जो देता है कद, ओहदा असल में उसी का ऊंचा होता है। वरना इस संसार में कुछ भी हमेशा रहने वाला नहीं है। वो कहते हैं ना कि इस संसार में सब कुछ क्षणिक है, तो आपके पास आज क्या है क्या नहीं है उसे भूलकर आप इंसान हैं और आपको इंसानियत से सबसे मिलना है, यही याद रखें काफी है। सुनते रहिए जीवन आधार सताक्षी के साथ।

रेडियो प्रसवानी 1701 AM पर जीवन का आधार, जीवन आधार आप सुन रहे हैं रेडियो प्रसवानी पर। और आज इस सफर में एक बार फिर से श्रोताओं आपका साथ मैं निभा रही हूँ। ये साथ कुछ ऐसे गीतों के साथ आगे बढ़ रहा है जो जिंदगी में बहुत जरूरी हैं और हमारी जिंदगी जिनके आधार पे टिकी है। कुछ ऐसे ही बातें और ऐसे ही गाने हमारा साथ आगे भी निभाते रहेंगे। सुनते रहिए जीवन का आधार, जीवन आधार।

आप हमेशा अपनी बात को सही साबित करना चाहते हैं, हमेशा सच कहना चाहते हैं, या आपकी बात ही सच है ये साबित करना चाहते हैं। याद रखिए कि दीपक कभी बोलता नहीं है, बस उसका प्रकाश ये बता देता है कि दीपक की रोशनी कितनी है। अगर उसे बुझा दिया जाए तो पल भर में अंधेरा हो जाएगा, और कम से कम वो जगह जहाँ पर वो जल रहा है वो उसी दीपक की वजह से रोशन है। ठीक इसी तरह भी आप अपने बारे में कभी कुछ मत बोलिए, बस अच्छे कर्म करते रहिए, वही कर्म आपका परिचय देते रहेंगे। सुनते रहिए हमारे साथ जीवन आधार।

आप सुन रहे हैं सताक्षी के साथ रेडियो प्रसवानी 1701 AM पर जीवन का आधार जीवन आधार। जी हाँ, जीवन की नैया को पार अगर लगाना है तो जीवन के आधार को समझना बहुत जरूरी है। हम सब भटके हुए मानव हैं और बहुत जरूरी है कि अपने आप को सही रास्ते पे लगा के जीवन की सच्चाई को, जो वाकई जीवन की सच्चाई है, उसे समझ सकें और जिस भ्रम में हम जी रहे हैं उससे परे हटकर अपनी जिंदगी जी सकें। सुनते रहिए रेडियो प्रसवानी और आगे बढ़ते हैं जीवन से जुड़े एक और गीत के साथ।

जीवन में बहुत सारी चीजें हैं जो संभालने की जरूरत है, लेकिन सबसे जरूरी चीज है आपकी जीभ। जिसने अपनी जीभ को संभालना सीख लिया वो जीवन को भी संभाल लेगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि जीभ का स्वाद आपका स्वास्थ्य खराब करता है, और जीभ के सहारे जो वाणी निकलती है ना, वो आपके संबंध खराब करती है। सिर्फ आपके घरेलू संबंध नहीं, आपके पारिवारिक संबंध नहीं, आपकी मित्रता खराब करती है, आपके काम के रिश्ते खराब करती है। आपको अर्श से फर्श पर लाने का काम आपकी जीभ बहुत आसानी से करती है। इसलिए अगर आपने अपनी जबान पर काबू कर लिया, उसे संभाल लिया, तो फिर आप जीवन में सब कुछ संभाल लेंगे। सुनते रहिए जीवन आधार सताक्षी के साथ।

श्रोताओं, जीवन आधार आप सुन रहे हैं रेडियो प्रस्वानी पर। और देखिए, ऐसा है कि जिसकी फितरत हमेशा बदलने की हो वो कभी किसी का नहीं हो सकता, जैसे कि समय और इंसान। आप समय को ही देख लीजिए, जो समय बीत रहा है वो कभी लौट के नहीं आएगा। जो समय गुजर गया उसे आप किसी भी कीमत पर वापस नहीं पा सकते। और इंसान, जो इंसान अपनी फितरत बदलता रहता है, जो इंसान आपके सामने कुछ और है और दूसरे के सामने कुछ और, वो इंसान ना तो कभी आपका हो सकता है और ना ही किसी और का। कम से कम आप खुद एक ऐसे इंसान ना बने जिसकी फितरत हर किसी के आगे बदलने की हो। सुनते रहिए जीवन आधार रेडियो प्रस्वानी पर।

ये था आज जीवन आधार का सफर रेडियो प्रिस्वानी पर। आज हमने फिर से जिंदगी को, ईश्वर को करीब से जानने की एक और कोशिश की। याद रखिए, अगर ईश्वर को पाना है तो खुद के अंदर झांकना होगा। अगर ईश्वर की शरण में जाएंगे, उस ऊपर वाले की शरण में जाएंगे, तभी आप इस जीवन को और इससे जुड़े जो सपने हैं उनको पा पाएंगे। कल फिर इसी सफर में आपसे एक बार फिर से मिलेंगे। नमस्कार।

नमस्ते अदाब सत श्री अकाल जी, वेरी गुड मॉर्निंग सुप्रभात। आप सभी सुन रहे हैं रेडियो प्रिस्वानी, आपके अपने दोस्त और होस्ट आरजे चांगी जैन के साथ। आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही तंदुरुस्त होंगे और हेल्दी होंगे। यही मेरी भगवान से दुआ है, आप हमेशा इसी तरह हंसते खुश रहें। तो आइए जी, इसी के साथ इस प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। इस गीत के साथ सुनते रहिए रेडियो प्रिस्वानी।

आप सभी सुन रहे हैं जाने का सफर रेडियो ब्रिस्वानी में। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और जानते हैं आज की खास बातें। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि वही हालात, वही लोग और वही जिंदगी होने के बावजूद भी कुछ लोग जो है अलग तरीके से सोचते हैं और आगे बढ़ते क्यों हैं? असल फर्क उनके नजरिए में होता है दोस्तों। यही नजरिया इंसान को या तो फिर आगे ले जाता है या फिर उसे वहीं रोक देता है। अब आचार्य चाणक्य जी की जो बातें हैं इसी नजरिए को बदलने की ताकत रखती है। उनकी नीतियां आज भी उतनी ही असरदार है दोस्तों जितनी सदियों पहले थी। ये सिर्फ किताबों में पढ़ने वाली बातें नहीं है बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाली सीख है। अगर आप इन बातों को समझकर अपनाते हैं तो फैसला लेने का तरीका बदल जाता है और कई मुश्किलें खुद ब खुद आसान लगने लगती है। जी हाँ, तो क्या है वो बातें जानेंगे थोड़ी देर बाद। आप जुड़े रहिए मेरे साथ रेडियो ब्रिस्वानी में।

रेडियो पिसवानी में एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, सही संगत हमारी दिशा तय करती है। लोग बदलते हैं, आदतें भी बदलती हैं। चाणक्य साफ कहते हैं कि इंसान अकेला नहीं बदलता, उसके आसपास के लोग भी उसे बदलते हैं। अगर हम ऐसे लोगों के साथ समय बिताते हैं जो मेहनती है, कुछ नया सीखना चाहते हैं और आगे बढ़ने की सोच रखते हैं, तो धीरे धीरे वही आदतें हम भी अपनाने लगते हैं, हम में भी आने लगती है। लेकिन अगर संगत गलत हो जाए तो इसका असर भी उतना ही तेजी से दिखता है। कई बार आपने देखा होगा, कोई अच्छा खासा इंसान गलत लोगों के बीच जाकर भी अपनी दिशा खो देता है। इसीलिए दोस्त चुनना या अपने आसपास का माहौल बनाना कोई छोटी बात नहीं है। दोस्तों, आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, सुनते हैं अगला गीत।

आप सभी सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी। अब बात करते हैं दूसरी, जो कि है समय की कीमत। जी हाँ दोस्तों, आज टालोगे तो कल पछताओगे। समय के बारे में चाणक्य जी की सोच बहुत साफ है, जो गया वो गया, वो वापस नहीं आता। आज के दौर में सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि लोग काम को टालते रहते हैं, कल कर लेंगे वाली आदत है ना, धीरे धीरे जो है जिंदगी की सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है। मान लीजिए आप किसी काम को सही समय पर नहीं करते तो बाद में वही काम ज्यादा मुश्किल और बोझ वाला लगने लगता है। इसके उलट क्या होता है, जो लोग समय का सही इस्तेमाल करते हैं उन्हें आगे बढ़ने में कम मेहनत लगती है। सच कहें तो समय को समझना ही आधी सफलता है। हमेशा हमें समय को समझते रहना चाहिए। आइए इसी के साथ हम समझते हैं इस गीत को। आप जुड़े रहिए मेरे साथ रेडियो ब्रिस्वानी में।

स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। आइए अब बात करते हैं ज्ञान। जी हाँ, ज्ञान ही हमारी असली ताकत होती है दोस्तों। पैसा खत्म हो सकता है, सीख नहीं। आज के समय में लोग अक्सर पैसा और पद को ही सब कुछ मान लेते हैं, लेकिन चाणक्य जी की नजरिए में असली ताकत ज्ञान है। पैसा कभी भी कम या ज्यादा हो सकता है, लेकिन जो हम सीखते हैं वो हमेशा हमारे साथ रहता है। एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ, अगर किसी के पास अच्छी समझ और अनुभव है ना, तो वो मुश्किल हालात में भी रास्ता निकाल लेता है। वहीं सिर्फ पैसे पर निर्भर रहने वाला जो इंसान है, वो मुश्किल आते ही क्या होता है, घबरा जाता है। इसीलिए सीखना कभी बंद नहीं होना चाहिए, चाहे किताबों से सीखे, लोगों से सीखे या फिर अपने एक्सपीरियंस से। हर चीज हमें आगे बढ़ाती है, तो इसीलिए बहुत जरूरी है ज्ञान का होना, जो हमेशा हमारे साथ रहता है। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक।

स्वागत है जी एक बार फिर से आप सभी सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी। तो आइए जी, आज आप सभी ने जानी है बहुत सारी बातें जो हमेशा अगर हम याद रखेंगे तो जिंदगी में सफलता प्राप्त हो जाएगी। तो आइए जी इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और अब समय हो गया है इस प्रोग्राम का अंत करने का। कल फिर हाजिर होंगे आप सभी के बीच लेकर प्रोग्राम जानने का सफर। तो आइए इसी के साथ अब बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं ये ट्रैक और अब दीजिए मुझे इजाजत। धन्यवाद।

लगातार मैं सताक्षी आप सुन रहे हैं रेडियो प्रिस्वानी 1701 है। सुनते हैं अब तक की प्रमुख खबरें और सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबरें। माली में जिहादी हमलों में 70 से ज्यादा लोगों की मौत, अलकायदा से जुड़े JNIM संगठन ने ली जिम्मेदारी। पिछले कुछ दिनों में मध्य माली में जिहादी हमलों की एक नई लहर ने कम से कम 70 लोगों को मौत के घाट उतारा है। इन हमलों की जिम्मेदारी अलकायदा से जुड़े संगठन जमाल नुसरत अल इस्लाम अल मुस्लिमी ने ली है। इन हमलों में सुनियोजित हमले भी शामिल हैं। इससे पहले भी गांवों पर हमले किए गए थे। हमलों में कम से कम 30 लोग मारे गए। खैबर पख्तूनवा में पुलिस चौकी पर आत्मघाती हमला, 15 सुरक्षा कर्मियों की मौत। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा प्रांत में एक पुलिस चौकी पर आत्मघाती हमले में 15 सुरक्षाकर्मी मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। ये घटना बन्नू में देर रात हुई, जहां विस्फोटक से भरी एक गाड़ी पुलिस चौकी की ओर आ रही थी, तभी सुरक्षाकर्मियों ने उस पर गोलीबारी की, जिसके बाद उसमें विस्फोट हो गया। टेनरिप द्वीप पहुंचा हंटा वायरस से प्रभावित शिप, WHO चीफ भी गए स्पेन। क्रूज ऑपरेटर ओशन वाइड एक्सपीडिएशंस ने बताया कि हंटा वायरस से प्रभावित डच फ्लैग वाले जहाज MV होडियंस पर सवार यात्री और चालक दल के कुछ सदस्य टेनरिफ में उतरना शुरू करेंगे। कंपनी ने बताया कि जहाज से उतरने वाले लोगों को तुरंत निर्धारित विमानों में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, क्योंकि जहाज हंटा वायरस से प्रभावित है। स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस एडनॉम के टेनरिफ में इस रेस्क्यू अभियान के समन्वय में मदद करने की उम्मीद है। स्पेनिश द्वीप के लोगों के नाम लिखे एक खुले पत्र में उन्होंने कहा कि वायरस से प्रभावित इस जहाज से उन्हें जो खतरा है वो कम है। आइए जुड़ते हैं भारत से और सुनते हैं भारतीय खबरें। बंगलुरु में पीएम मोदी के कार्यक्रम स्थल के पास मिली विस्फोटक सामग्री। बंगलुरु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले सुरक्षा में कड़ी चूक सामने आई है। उनके मुख्य कार्यक्रम स्थल के पास जेलेटिन की दो छड़ें बरामद हुई हैं। बंगलुरु के सेंट्रल रेंज की DIG के अनुसार ये विस्फोटक सामग्री रविवार सुबह सुरक्षा जांच के दौरान मिली। ये जगह उस कार्यक्रम स्थल से करीब 3 किलोमीटर थी, जहां प्रधानमंत्री को पहुंचना था। वंदे मातरम के बाद राष्ट्रगान, विजय के शपथ ग्रहण और जनता का उत्साह। तमिलनाडु में थलापति विजय ने राज्य के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण की। इसके साथ ही राज्य में सरकार गठन को लेकर सभी संशय भी समाप्त हो गए। ये शपथ ग्रहण समारोह चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित किया गया। इस दौरान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी मंच पर मौजूद रहे। मंच पर राहुल गांधी और विजय की तस्वीरों सहित स्टेडियम में मौजूद लोगों के उत्साह ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। ये थी अब तक की प्रमुख खबरें। अगली खबरों के साथ जल्द होगी मुलाकात।

0: on 1701 Brisbane. It's your morning drive show with your host, Amita and Jatish. सुबह का सफर आपके हम सफर जतीश और अमिता।
1: स्वागत है आप सभी का रेडियो बिजवानी पर। जी हाँ दोस्तों, सभी को प्यार भरा नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। और अमिता आपको भी नमस्ते।
2: नमस्ते भाई जी, नमस्ते एवरीवन, गुड मॉर्निंग। इट्स मंडे अगेन। Wow.
1: Monday again. It's Monday again.
2: Yes. I
1: Monday,
2: hope you all had
1: Monday.
2: Great weekend.
1: Yeah. Okay. Let's see. Weather-wise, huh? Kya ho raha weather mein? Aaj ke liye kaha gaya hai ki 16 was the minimum, 25 rahega maximum. Oh, that's nice. 25%, yani low chance of at least 1 millimeter of rain kaha gaya hai. Theek hai? और सनराइज वाज 6:18 AM और सनसेट विल बी 5:09। ठीक है। अच्छा, कल के लिए 17 and 24 रहेगा, शावर वो 2 कहा गया है, 50% चांस, मीडियम चांस ऑफ एटलीस्ट 1 millimeter, 25% लो चांस ऑफ एटलीस्ट 2 millimeters। ओके। और टुमारो भी सनराइज विल बी 6:19 एंड सनसेट विल बी 5:09। वेंसडे के लिए कहा गया है 17 and 24 रहेगा मैक्सिमम, शावर्स इजिंग, रेन 50%, मीडियम चांस ऑफ एटलीस्ट 2 millimeters, ओके, एंड 25% लो चांस ऑफ एटलीस्ट 4 millimeters ऑफ रेन, ओके। और फिर थर्सडे के लिए कहा गया है 16 and 23 रहेगा, 50% चांस ऑफ एटलीस्ट 2 millimeter चांस ऑफ रेन। Sometimes sunrise will be 6:20 and sunset will be 5:07. Friday के लिए आने वाला Friday जो है 15 and 25 रहेगा, shower 2 कहा गया है, 25% low chance of 3 millimeters of rain। और क्या बोलते हैं, देख रहा हूँ इधर, sunrise sunset same रहेगा। Saturday के लिए 15 and 25, showers or 2, 50% medium chance of at least 1 mm of rain, or sunrise will be 6:21 AM and sunset will be 5:06 PM. It's funny, every day about a minute
2: difference.
1: Difference ho raha hai. Aur Sunday ko 16 and 26 rahega maximum, or shower 2, rain 50% medium chance. Bas that's about it
2: for the weather.
1: For weather wise aur traffic mein kya ho raha hai, ट्रैफिक और चलते हैं दोस्तों। तो ट्रैफिक में हम देख रहे हैं इधर क्या हो रहा है, ट्रैफिक क्या भाई, व्हाट इज हैपनिंग हियर, आई कांट बिलीव दिस, कैन यू सी द ट्रैफिक देयर,
2: इट्स गोइंग फनी।
1: ओह नो नो नो, आई गॉट इट।
2: ओके,
1: या दैट्स फनी, लेट मी रिफ्रेश इट। आज क्या है, आज
2: मंडे 11th
1: ऑफ 54 मिनट्स अगो, या हडसन रोड एल्बियन क्रैश एक क्लियर हो गया है दोस्तों, दैट्स अबाउट इट, नथिंग मोर टू रिपोर्ट। ओके,
2: वेल द यूजुअल हेवी ट्रैफिक फ्रॉम डेरा टू जिंजली ऑन दैट सेंटिनरी, द इप्सविच मोटरवे लुक्ड लाइक इट वाज बिल्डिंग अप एंड देयर वाज something happening around Caxton Street, so it's affecting that area, the Hale Street and Milton.
1: Okay.
2: So hopefully it's cleared up. They said by 7 it should be okay. What's the time now? 7:08. So hopefully it didn't leave some traffic behind, you know?
1: Okay. Now, Fiji News.
2: Uh-huh.
1: Fiji government has frozen new public service appointment as part of tightening spending and administrative control. Fiji and Australia are moving closer to a major new, this has been in the news for a long time, so we'll leave that alone. Fiji has climbed sharply in the global media freedom rankings, moving from 84th place in place 2023 to 24th place this year. Leaders say it reflects improved press freedom and journalist safety. Okay, a heavy rain alert remains in place for parts of Fiji, including Viti Levu, Vanua Levu, Te Viuni, Kandavu, and nearby islands, with forecasts of rain and thunderstorms. Fiji's elections office has started a new youth research campaign to encourage voter registration ahead of upcoming general and local government elections. The government is pushing ahead with a new Kawa Yangona bill aimed at protecting farmers, improving quality standards, and strengthening the industry. And Fiji Airways donated medical equipment to Nandi Hospital maternity unit ahead of Mother's Day celebration. Wow. Okay. Sports. Fiji under 20 rugby players are preparing for an international series in South Africa later this month despite difficult weather conditions affecting training. Fiji retained the 2026 Oceania Women's Rugby Championship title after defeating Samoa 60-7. Wow. Schools Rugby League finals wrapped up across Fiji over the weekend with strong crowd and youth participation. Australia says Pacific nations, including Fiji, remain vulnerable to fuel price rises because many island economies still depend heavily on imported diesel. And how about this? Fiji Business News reports that Bunnings Warehouse plans to launch a Fiji-focused online store.
2: Oh, wow.
1: And what will that do to the local hardware stores, I wonder?
2: Yeah.
1: I don't know how that's going to work. Maybe they will have a, just like Amazon here, they will probably have one outlet there where they will
2: deliver.
1: You know, you order and it gets delivered. तो ये रहा कुछ फिजी का समाचार दोस्तों. रेडियो बिजवानी आप सुन रहे हैं, आपकी अपनी पहचान. जैसे फिजी रग्बी इज अ वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ रग्बी. दे मेक डिसीजंस इंस्टेंटली व्हाइल दे आर प्लेइंग. दे से नो अदर कंट्रीज कैन डू दैट. दैट्स व्हाई फिजी प्लेयर्स आर वेल रिनाउंड बिकॉज ऑफ द एबिलिटी टू कम अप द प्लान on the go.
2: Just on the spot. How good is that? While going.
1: On the spot, yeah. Amazing, eh?
2: Mm.
1: Yes. Anyway. Well, the good is something at least. That's good to know. Okay. Chalo gaana sunte hain dosto, fir wapas aate hain. Radio Bizwani aap sun rahe hain. Number hai 04-3003-1701.

0: तेरा फितूर जब से चढ़ गया अभी आपने सुना। चलिए हमारे पास एक कॉलर है और एक कविता है आपके पास। हेलो नमस्कार, आपका स्वागत है रेडियो बिजवानी पर।
1: नमस्कार जतीश पूरन जी, आपको और अनीता को भी और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जी हाँ
0: जी,
1: आप? मैं कुशवा सहाय बात कर रही हूँ।
0: हाँ हाँ हाँ, कैसे हैं आप? ठीक है?
1: बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। आपका प्रोग्राम सुन रही थी तो सोचा आपने कुछ इंस्पिरेशन के बारे में बात कर रहे थे तो मैं बोली मैं भी कुछ आपको कल जो मदर्स डे था ना
0: जी जी
1: तो उस पर मैं बोलना चाहती हूँ कविता।
0: अच्छा जरूर, चलो बोलिए जी।
1: अच्छी बात है। अच्छा, बोलने से पहले एक बार फिर से सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं कुशला सहाय हूँ और मुझे आशा है सभी माताओं को और बहनों को कल बहुत प्यार मिला होगा क्योंकि मातृ दिवस था और उनको भगवान की तरफ से भी आशीर्वाद मिला होगा तो बच्चे आए होंगे और स्वागत किए होंगे, उपहार दिए होंगे। तो उस अवसर पर मैंने एक कविता लिखी थी जो मदर्स डे पर है। मैंने सोचा क्यों नहीं आज ही अच्छा समय है, आप सभी को सुना दो, शायद आप लोगों को पसंद आ जाए।
0: ठीक है, जरूर जरूर।
1: तो माँ का अटूट प्यार, माँ का वह माँ ही है जिसके रहने रहते जिंदगी में कोई गम नहीं होता। वो माँ ही है जिसके रहते जिंदगी में कोई गम नहीं होता। दुनिया साथ दे या ना दे पर माँ का प्यार कभी कम नहीं होता। बिना कहे जो हर बात समझ लेती है, बिना कहे जो हर बात समझ लेती है, वो माँ ही है जो हर दर्द पहचान लेती है। आज की दुनिया के भाग दौड़ से, आज की दुनिया के भाग दौड़ से कभी जो हम घबरा जाएं, दूर हो जाएं सारे शिकवे अगर माँ की हाथ सिर पर आ जाए। खुद भूखे प्यासे रहकर भी जिसने हमें दूध मलाई खिलाया है, गिरते हुए हर कदम पर उसने संभल कर चलना सिखाया है। उसके डांट फटकार में भी छुपा रहता है अटूट प्यार। कितने गम सहकर भी वह नहीं मानती अपना हार। विनती करती सदा प्रभु से हमें सदा सुखी संसार मिले, विनती करती सदा प्रभु से हमें सदा सुखी संसार मिले। जब तक चमके चांद सितारे जीवन में रंग बिरंगे फूल खिले। माँ का प्यार की कीमत कोई कभी चुका नहीं सकता, माँ के प्यार की कीमत कोई कभी चुका नहीं सकता। उसकी दिल की दुआएं को कोई कभी मिटा नहीं सकता। इस धरती पर माँ ही है सबसे प्यारी सूरत है, इस धरती पर माँ ही सबसे प्यारी सूरत है। हर आंगन में चमचमाती उसकी भोली मूरत है। शब्द कम पड़ जाते हैं माँ की ममता समझाने में। उसकी खुशबू मिल जाती है अपने मन मंदिर के कोने में। धन्यवाद, आप हमें समय दिया सुनाने के लिए और आशा है सुनने वालों को अच्छा लगा होगा।
0: जरूर अच्छा लगा होगा, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच आंटी जी, बहुत वेरी नाइस। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। अमिता को भी बहुत अच्छा लगा।
2: एब्सोल्युटली
0: सो ब्यूटीफुल। और चलिए थोड़ा सा एक कहानी बता दूं। मैं अभी वीकेंड में जब मदर्स डे रहा तो मेरा थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं था, लेकिन एनीवे तो मुझे एक बात याद आई
1: जी।
0: कि मुझे याद है बचपन का बहुत कुछ ऐसे यादें हैं जो शायद हम बहुत लोग याद करते हैं, छोटे छोटे जो होते थे, जैसे जब कि पहला जूता मिला था कहाँ रखकर सोया था, ऐसे ऐसे कुछ बातें हैं। जब मेरी माँ एक बार मैं थोड़ा गुस्सा गया था, मुझे फ्लू पकड़ा था और मेरी माँ समय समय से अपने हाथ लगाकर बॉडी में मेरा चेक कर रही थी कि कुछ कम हो रहा या नहीं। तो मैंने बोला, माँ क्या कर रही हो, मैं नींद में था, मुझे क्यों जगा दिया आपने। तो वो सब बातें हैं जो अभी जो आपने कहा कि माँ जी
1: क्या अगर उसका हाथ सिर पर आ जाए तो सारे शुक्र दूर हो जाते हैं ना,
0: हो जाते हैं। जी हाँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच।
1: थैंक यू, और अगर हो सके तो आप माँ पर एक गीत लगा दीजिए, सब कुछ मिल जाता है लेकिन माँ नहीं मिलती।
0: अच्छा ठीक है, अच्छा
1: बहुत धन्यवाद है आपको समय देने के लिए, और सभी श्रोताओं को फिर से एक बार मेरा प्यार भरा नमस्कार।
0: नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। वाह, बहुत अच्छा लगा दोस्तों, उम्मीद है कि आपको भी उतना अच्छा लगा होगा। ऑब्वियसली क्यों नहीं अच्छा लगा होगा, सो ब्यूटीफुल, इमेजिन हाउ मच थॉट वेंट इनटू दैट, कितना वो उन्होंने किस तरह से सोचकर इसको लिखा, इट्स सो ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। कैन यू प्ले दिस सॉन्ग?
2: यस, आई वाज थिंकिंग ऑफ दिस सॉन्ग व्हाइल द poetry was going on. I just thought of the song here. It really touched me. A beautiful one. And here's a song.
0: Okay.

चलिए, जो गीत आपने फरमाइश किया था, गीत मिल गया है और सुन लेते हैं। बड़ा प्यारा गीत है दोस्तों।

0: जी हाँ, मैं सोच रहा था कि आप माँ नहीं बदल सकते हो, पिता नहीं बदल सकते हो, अपने बच्चे नहीं बदल सकते हैं, अपने भाई बहन नहीं बदल सकते हैं, लेकिन अपने बीबी को लोग बदल देते हैं, हस्बैंड को बदल देते हैं। शायद कारण होगा कि ये दोनों खून का रिश्ता नहीं है, शायद इसीलिए। व्हाट अ वियर्ड थॉट, बट आई वॉज जस्ट थिंकिंग। अभी देखो, जो लोग बच्चे पैदा कर देते हैं, फिर डिवोर्स हो जाते हैं, दूसरा पार्टनर ले आते हैं, क्योंकि ये कोई खून का रिश्ता नहीं है। लेकिन हाँ, जो बच्चे पैदा होते हैं वो आपका खून का रिश्ता बन जाता है, और खून का जो रिश्ता है ये नहीं टूट सकता दोस्तों। ठीक है, ऐसे होता है दुनिया में।
1: What a thought, yeah.
0: I hope everybody had a good Mother's Day.
1: Yes, me too. I hope
0: Eh?
1: so. I had a great Mother's Day. Mine started from the pre last week.
0: Okay.
1: So, yes.
0: ओके, चलो एक गाना भी इसे थोड़ा सा याद आ गया, तो क्यों नहीं इसको मैं बजा दूं आप सभी के लिए। नंबर है 04300031701। अगर आप भी कुछ कहना चाहें दोस्तों, जरूर आइए, वी विल वेलकम यू। ओके,

0: वेल, आई होप यू गाइस लाइक दिस सॉन्ग. ये दुनिया के रिश्ते कैसे बदल जाते हैं. ओके.
1: वेरी वेरी अप्रोप्रिएट सॉन्ग.
0: चलो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं. आप रेडियो बिजवानी आप सुन रहे हैं. जितने भी लोग आज हमारे इंटरनेट से सुन रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया. हमेशा आप आ जाते हैं. थैंक यू सो मच. अच्छा लगता है व्हेन वी सी यू देयर फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड.
1: यस,
0: कुछ लोग हैं सोने जा रहे हैं, लेकिन फिर भी आंख आंख मीच कर रेडियो सुन रहे हैं, को जागने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमारा रेडियो सुन सके. आई कैन सी इट फ्रॉम हियर. चलो, आपका जो प्यार है क्या बताऊं मैं. खैर, चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों. और नंबर है 04-3003-1701. अगर आप अवसी से कॉल करके बातें करना चाहते हैं तो +61, राइट, 4-3003-1701.
1: यस.
0: ओके, टेल अस समथिंग अबाउट यहां से आप सुन रहे हैं. बहुत अच्छा लगेगा कि जो कंट्री में है आप, वहां पर क्या हो रहा, कैसे है वेदर वगैरह, सब बताइए, अच्छा लगेगा. ओके. और क्या है आगे, कुछ सोचा था मैंने, देखो निकल गया दिमाग से.
1: yep.
0: हमारा थोड़ा या डाइवर्ट हो गया था. खैर, चलो मिता, प्ले समथिंग.
1: ओके, आई वाज थिंकिंग ऑफ
0: व्हाइल आई गेट माय थॉट्स टुगेदर,
1: गेट द सॉन्ग हियर.

जी हाँ, प्यार का बंधन खून का बंधन नहीं, लेकिन प्यार का बंधन भी वो होना बहुत जरूरी है। अगर प्यार का बंधन ना हो तो फिर खून का बंधन कैसे हो सकता है कि नहीं? तो एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, वो है प्यार। जी हाँ, तो आगे बढ़ते हुए दोस्तों, एक गाना मुझे याद आ गया जब मैं सुन रहा था अमिता जी का जो गीत, आपको भी अच्छा लगेगा शायद, फिल्म मृत्युदंड का गाना है माधुरी दीक्षित और

0: ये गाना है जो मैं हमेशा बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ और अच्छा लगा, उम्मीद है कि आपको भी अच्छा लगा होगा। फिल्म मृत्युदंड का गाना था, माधुरी दीक्षित और उदित नारायण। इसमें माधुरी व्हाट एम आई सेइंग,
1: साउंड्स लाइक अलका याग्निक डजंट इट,
0: अलका याग्निक एंड उदित नारायण ने गाया था इस गीत को। उसमें माधुरी दीक्षित थी इस मूवी में। ठीक है,
1: ओके, सो प्लेबैक सिंगर फॉर माधुरी।
0: ऑलराइट, नाउ यू प्ले समथिंग।
1: माय टर्न, हे, ओके, हियर वी गो।

ऑल राइट दोस्तों, इस समय 8:30 बज गया है और कुछ मिले जुले गीत आज हम लेकर आए हैं। मैं जानता हूँ कुछ लोग ये पुराने गीत पसंद करते हैं, कुछ लोग बिल्कुल नया गीत पसंद करते हैं, तो कोशिश करते हैं सबको खुश रखने के लिए। चलिए गीत एक है, कहते हैं कि आंखें भी होती है दिल की जुबान, कभी कुछ ना कहते हुए आंखों से हम बहुत कुछ कह लेते हैं।

0: जी हाँ दोस्तों, आंखें भी होती है दिल की जुबान। और चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और 25 मिनट रह गया है 9 बजने में। आप सुन रहे हैं रेडियो बिजवानी, आपकी अपनी पहचान। ओके, आई एम श्योर यू प्लेइंग समथिंग नाउ।
1: आई वांटेड टू प्ले दिस अर्लियर ऑन बट यू बीट मी टू इट एंड यू प्लेड योर सॉन्ग, सो आई दिस वाज इन माय हेड टू प्ले बिकॉज आई कैन पिक्चर For some reason, I'm picturing Anupam Kher.
0: Oh, okay.
1: I don't know whether he's in the movie or not, but it just, you know.
0: Okay.

और अब दोस्तों हम आपको कुछ और पीछे की ओर ले जा रहे हैं, ठीक है? शायद ये गाना आपको पसंद आ जाए।

0: जी हाँ दोस्तों, ब्लैक एंड व्हाइट मूवी 100 साल पहले, देवानंद और आशा पार्क के लिए गीत आपने सुना। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। और समय समय भाग रहा है, 8:47 हो गया है, तो चले दो तीन गीत और आपके लिए, और फिर कल तो हम आएंगे जरूर, और यही उम्मीद है कि आप लोग भी हमारे साथ देंगे। ठीक है, ओके। व्हाट आर यू ट्राइंग टू प्ले नाउ?
1: व्हाट एम आई प्लेइंग? वन ऑफ आई थिंक इट्स एवरीबॉडीज फेवरेट।
0: ओके,
1: सो हियर वी गो।

0: ओह, टेन
1: ओके
0: टू
1: बहुत बहुत प्यारा गीत अभी आपने सुना दोस्तों. चलो एक गीत और मैं बजा दूं, फिर अमिता यू माइट हैव टू डू द लास्ट सॉन्ग.
0: ओके
1: ओके हियर वी गो. आई नो एवरीबॉडी लव दिस सॉन्ग.

0: तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे, अभी आपने सुना दोस्तों, और पगला कहीं का गाना। I would say it is one of the best songs of Rafi.
1: I think so. Like one of the all-time favorites, isn't it?
0: That's right. All-time favorite. I have always loved that song. It's a wonderful song. Okay, मुझे याद है movie भी. I remember that movie very well too. So anyway, अब हम आखिरी गीत पर आ गए हैं.
1: जी.
0: और आखिरी गीत आपके लिए अमिता जी.
1: Yes, I will. After our program, it happens at 9 o'clock, and what follows thereafter?
0: After that, Sataakshi will bring you a program at 9 o'clock. फिर 11 बजे से आप हो जाएंगे संदेश के साथ, पंजाबी प्रोग्राम है, जरूर डू लिसन टू इट. फिर 3 बजे से निविया के साथ. सो या एंजॉय.
1: यस, एंड वी विल सी यू ऑल टुमारो मॉर्निंग. सो
0: यस,
1: हैव अ ग्रेट ग्रेट डे एंड टेक केयर एंड सी यू ऑल टुमारो. नमस्ते.
0: ओके अमिता, नमस्ते. नमस्ते एवरीवन.

गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राम राम। भाई कैसे हैं आप सब? जिंदगी में सब कुछ बढ़िया? बढ़िया घट रहा है, बढ़िया चल रहा है और जिंदगी बढ़िया बीत रही है ना। हाँ, तो इस जिंदगी को थोड़ा और पावरफुल बनाने के लिए, जिंदगी को थोड़ा और समझने के लिए और समझाने के लिए सताक्षी है इस वक्त आपके साथ, आपके अपने रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM पर। और मेरे साथ हैं कुछ बहुत ही प्यारे गाने और सुबह की ताजा ताजा बातें। जी हाँ, ताजा खबर सुबह ही सुबह आती है ना, तो हमारी भी ताजा ताजा बातें सुबह सुबह आ गई हैं, बिल्कुल न्यूज़पेपर की तरह। लेकिन ये न्यूज़पेपर वो न्यूज़पेपर है जिसे आप पढ़ेंगे नहीं बल्कि सताक्षी से सुनेंगे। जी हाँ, जिंदगी की बातें छपी हैं भाई यहाँ और वही बातें आप तक पहुंचाई जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं इट हैपेंस रेडियो ब्रिस्वानी पर और आगे बढ़ते हैं फिलहाल इस अगले ट्रैक के साथ। कीप लिसनिंग टू रेडियो ब्रिस्वानी, मेरे साथ एंजॉय करते रहिए आपका अपना ब्रेकफास्ट शो।

0: तक
1: ब्रेकफास्ट शो, आपके ब्रेकफास्ट शो को इस वक्त आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी पर, आपके साथ सताक्षी है और आप मेरे साथ एंजॉय कर रहे हैं इट हैपेंस। वेल चलिए आगे बढ़ने से पहले विश करते हैं उन्हें जिनके लिए है आज का दिन स्पेशल और बहुत बहुत बहुत खास। तो भाई जो आज पार्टी करने के मूड में है, एक दूसरे को अपने दोस्तों को ट्रीट देने के मूड में है और ढेर सारा सेलिब्रेशन करने के मूड में है, जिन्हें बहुत सारे गिफ्ट्स और विशेष सुबह से मिलनी शुरू हो गई है और जिन्हें मजा आ रहा है, आज कुछ स्पेशल फील कर रहे हैं, उन सारे बर्थडे बेबीज को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और पूरा दिन आप स्पेशल फील करते रहिए। भाई आपका दिन है और अपने हिसाब से इसको जीना है, राइट? और अपनी जिंदगी के लिए बहुत सारी प्लानिंग्स जो आपने की है ना, कैसे कैसे उन्हें एग्जीक्यूट करना है, इस पर भी ध्यान दीजिए। चलिए और विश करा जाए उन्हें भी जो एक दूसरे का हाथ थाम के इस वक्त खड़े हुए हैं और हमारी ओर एकदम नजर गड़ा कर देख रहे हैं कि सताक्षी हमें भी विश करना है। तो भाई बिल्कुल विश करना है और आपको तो जरूर विश करना है, हम जानते हैं आज का दिन ये पल आपके लिए बहुत ही खास है। आज भाई शादी हुई थी आपकी, हाँ, तो जन्म जन्म का साथ निभाने के लिए एकदम रेडी है। तो भाई चाहे शादी के ही कितने भी साल गुजर गए हों, ये जो प्यार है मैरिज में ये कम नहीं होना चाहिए, विश्वास एक दूसरे पर बढ़ता रहे और जो ट्रस्ट है ना वही आपको शादी के बढ़ते सालों के साथ एक दूसरे के करीब लेकर आता है। और जिनकी आज जिंदगी में कुछ खास या स्पेशल होने वाला है उन सबको ऑल द वेरी बेस्ट। आप सबके नाम प्ले करती हूँ ये अगला ट्रैक, एंजॉय कीजिए और सताक्षी के साथ सुनते रहिए इट हैपेंस।

इट हैपेंस एंजॉय कर रहे हैं आप सताक्षी के साथ रेडियो प्रस्वानी पर, और इट हैपेंस में हम आपके साथ जुड़कर आपको कुछ बेहतरीन गानों के साथ जोड़ रहे हैं। भाई हम जानते हैं कि मॉर्निंग ट्रैक्स बड़े ही खास हैं आपके लिए, क्योंकि इनकी एनर्जी आपको आगे बढ़ने के लिए, दिन को आगे लेकर जाने के लिए मोटिवेट करती है। सुबह सुबह जब एक्साइटिंग चीजें सुनते हैं ना, या मोटिवेशनल चीजें सुनते हैं, या फिर हम कुछ बहुत लाउड म्यूजिक भी सुनते हैं, तो हमें लगता है कि यार जिंदगी में एक पुश मिल रहा है ना, क्योंकि पॉजिटिव वाइब्स आती है, क्योंकि लगता है कि जिंदगी भाग रही है, कुछ अच्छा करना है। और जब हम स्लो म्यूजिक सुने अगर, तो हमें लगेगा कि यार जिंदगी में ठहरना है। तो इसीलिए हम आपके लिए कुछ ऐसे मॉर्निंग ट्रैक्स प्ले करते हैं जो आपको जिंदगी का पुश दे सके, आपको आगे बढ़ा सके, और आपको ये बता सके कि भाई ये सुबह का वक्त है और इस वक्त में ठहरना नहीं है ना, अभी तो शुरुआत हुई है और ये दिन यूं ही पूरे दिन चलता रहे। तो चलिए इस दिन को हम आगे लेकर चलते हैं इस एक और ट्रैक के साथ। एंजॉय कीजिए और सताक्षी के साथ एंजॉय करते रहिए। इट हैपेंस ओनली ऑन रेडियो प्रस्वानी 107.01 FM।

0: मॉर्निंग में जब आप लोगों से मिलते होंगे सुबह सुबह, तो हैंडशेक तो करते होंगे ना। हाँ, और लोग भी आपके पास आके हैंडशेक करते होंगे। देखिए, इस दुनिया में ना एक बहुत बढ़िया बात है जो समझने की बहुत जरूरत है दोस्तों, कि लोग आपसे हाथ तो मिलाते हैं लेकिन वो आपसे दिल नहीं मिलाते। वो आपके साथ आपकी जेब देखकर होते हैं। जब तक आपके पॉकेट में पैसे हैं वो आपके साथ चलेंगे, और जब पैसे खत्म तो उनका साथ भी खत्म। वो किसी ना किसी मकसद से आपके साथ जुड़ते हैं, अपने किसी ना किसी फायदे के लिए आपके साथ जुड़ते हैं। एक बार उनका फायदा हो गया फिर वो आपको पहचानते नहीं, और अगर आप उनको ऐसे लगे आगे चल के कि भाई इससे तो मेरा फायदा निकलना ही नहीं है ना, तो वो बीच रास्ते में आपका साथ छोड़ के गायब हो जाते हैं। और खुदा ना खास्ता कभी आपको उनकी जरूरत पड़ गई, तब तो बॉस मतलब आप जानते ही हैं मैं क्या कहूँ, है ना। क्योंकि कहीं ना कहीं हम सबने ऐसे लोगों को फेस किया है, ऐसे लोगों से मिले हैं, तो उनकी फितरत हम अच्छी तरह से जानते हैं। तो मैं ये कहती हूँ कि बार बार ऐसे लोगों को जिंदगी में मौका क्यों देना है, मतलब हम क्यों उनसे कोई उम्मीद रखें। उनसे उम्मीदें ही मत रखिए, ठीक है वो आपके साथ जुड़े हैं, आपके साथ हैं, आप जुड़े रहिए, लेकिन उनको अच्छे से पहचानिए जरूर, है ना। और जरूर उनको उनसे कोई उम्मीद मत कीजिए, और जब आपको लगे कि यार ये बंदा मुझसे फायदा निकाल रहा है तो उसे वहीं रोक दीजिए। क्योंकि अपने आप को बार बार दूसरे के फायदे के लिए यूज होने देना, ये भी हमारी गलती है ना। तो ख्याल रखिए। आइए फिलहाल एक और ट्रैक सुनिए सताक्षी के साथ, और सुनते रहिए इट हैपेंस ओनली ऑन रेडियो ब्रिस्फानी 107.1 FM।
1: प्यार की तरंगे सरगम बन जाती है, संगीत के हजारों धुने गूंजने लगती है।

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
3: यार, I'm so worried. Actually, want an experienced lawyer to handle my case.
2: मेरी advice है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का vast experience है और law की entry cases को handle करने में उनकी expertise है. Criminal law, domestic offence, traffic drug offence में 12 साल से ज्यादा का rich experience. और तो और conveyance, family law, immigration laws में भी भारद्वाज and associates के lawyers का vast experience है. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
3: Thanks, Atanya. I'm so relaxed to hear that.
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
4: वेलकम बैक, रेडियो बृजवाणी पर सताक्षी के साथ आप सुन रहे हैं आपका अपना ब्रेकफास्ट शो इट हैपेंस। आइए बढ़ते हैं गानों के हैट्रिक की ओर। जी हाँ, 3 बैक टू बैक ट्रैक्स एक बार फिर से आपके लिए लेकर आई है सताक्षी। और ये गाने जो है, ये एक बार फिर से सदाबहार गाने हैं, बॉलीवुड के वो गाने हैं, हमारे वो मॉर्निंग ट्रैक्स हैं जिन्हें आप हमेशा सुनना पसंद करते हैं। सो स्टे ट्यून्ड, रेडियो बृजवाणी, हमारे साथ सुनते रहिए गानों की हैट्रिक। ये पहला ट्रैक है आपके लिए।

तीन बैक टू बैक ट्रैक्स का हमारा सफर गानों की हैट्रिक इस वक्त आप एंजॉय कर रहे हैं सताक्षी के साथ। गानों की हैट्रिक का ये लास्ट ट्रैक और इसके बाद होंगी ढेर सारी बातें आपके अपने ब्रेकफास्ट शो इट हैपेंस में। चलिए आगे बढ़ते हैं और एंजॉय करते हैं अभी गानों की हैट्रिक का ये तीसरा ट्रैक।

0: दिल।
1: देखिए बॉस, अभी बात करूंगी उनसे जो अपना बहुत ख्याल रखते हैं, जिम जाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे, योगासन करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, सब कुछ करते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली उन्हें फिर भी सुकून नहीं मिलता है। वो फिर भी परेशान रहते हैं, फिर भी बीमारियां उनके आसपास रहती हैं, फिर भी वो हील नहीं हो पाते। क्या है इसकी वजह? इसकी वजह है कई बार लोग जो है वो झूठ बोलते हैं, और जिसमें झूठ बोलने की आदत है वो खुद को कितना भी फिट रख ले, कितना भी मेंटेन रख ले, कितना भी खुद पर ख्याल रख ले, खुद का ध्यान रख ले, बट वो खुद को हील नहीं कर पाता है। किसी भी तरह से वो अपने आप से सेटिस्फाई नहीं रह पाता है। बहुत छोटी छोटी बातों में आज लोग झूठ बोल रहे हैं, बहुत छोटी छोटी बातों में जिसमें कई बार जरूरत भी नहीं होती है। तो ऐसे लोग जो है वो कभी सेटिस्फाई नहीं रह पाते, खुश नहीं रह पाते। उनके अंदर जो है वो कुछ ना कुछ उनको तंग करता रहता है, परेशान करता रहता है, कौंधता रहता है, और इसलिए ऐसे लोग हमेशा परेशान रहते हैं, अनहील रहते हैं। तो खुद का ख्याल रखना चाहते हैं तो सिर्फ एक्सरसाइज और जिम ही काफी नहीं है। भाई साहब, सच बोलना शुरू कीजिए, थोड़ा सा हेल्दी एनवायरमेंट खुद के लिए क्रिएट कीजिए और दूसरों के लिए भी। एक और ट्रैक सुनिए सताक्षी के साथ, और सुनते रहिए इट हैपेंस रेडियो ब्रिस्वानी पर, और एंजॉय कीजिए अभी अगला मॉर्निंग ट्रैक।

कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पेरेंट्स आपको कुछ कह देते हैं गुस्से में, डांट के, है ना, और आपको वो बातें बड़ी बुरी लग जाती हैं। मतलब कैसे हमें कह दिया। कभी आपके दोस्तों के सामने आपको कुछ कह देते हैं और भाई हमें लगता है कि हमारी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है, ऐसे कैसे हमारे पेरेंट्स हमें कह देते हैं। देखिए सबसे बड़ी चीज कि आप जिन दोस्तों की बात कर रहे हैं ना, जब आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा वक्त आएगा कि आपको वाकई अपने दोस्तों की जरूरत होगी, तो उनमें से कितने दोस्त आपके लिए खड़े होंगे आपको नहीं पता है। लेकिन आप आंखें बंद करके एक बात कह सकते हैं कि आपकी जिंदगी में चाहे कैसा भी वक्त आ जाए दोस्तों, आपके पेरेंट्स आपके साथ जरूर खड़े रहेंगे। आपको अपने माता पिता की, अपने पेरेंट्स की बातें, अपने मदर फादर की बातें बुरी जरूर लग सकती हैं, बट वो कहते जो भी कहते हैं वो कहते आपके बेनिफिट के लिए ही हैं। उन्हें सिर्फ और सिर्फ आपसे मतलब है, आपके बेनिफिट से मतलब है, आपकी लाइफ से मतलब है। और अगर आपके दोस्तों को वो कभी कुछ कहते हैं या दोस्तों के सामने आपको कहते हैं, डेट मीन्स वो दुनिया आपसे ज्यादा देख चुके हैं और उन्हें पता है कि आपके दोस्त, वो यार जिन्हें आप अपना सब कुछ मानते हैं, वो आपके लिए सही नहीं है, है ना। तो बहुत ख्याल रखिए इस बात का, रिस्पेक्ट कीजिए अपने पेरेंट्स की, क्योंकि वो आपको हमेशा सच बताएंगे, सही बताएंगे, और लाइफ में कोई भी फेज आएगा आप उन्हें हमेशा खुद के साथ खड़ा पाएंगे। एक और ट्रैक इसी बात पर सताक्षी के साथ सुनिए और सुनते रहिए इट हैपेंस ओनली ऑन रेडियो प्रस्वानी 1701 AM।